एफएम के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:54 हो चुके हैं। आरंभ होते

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए चलते हैं आपको लेकर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से हम थोड़ी ही देर में सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और

0: जान से शेड गेट के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, इंसान की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 221। छह बजकर 45 मिनट पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। सुनिए इस श्रृंखला का पांचवा भाग। प्रस्तुति है चारुबाला खरे की। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमें राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है ममता सिंह का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार गायक हेमंत कुमार पर। सुनिए इसका पुनः प्रसारण 9:30 पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। सुबह 10 पिटारा में सुनिए सेहतनामा, जीवन शैली और योग। योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। दोपहर 1 से गुनगुनाइए सुरीला सफर में। 2:30 पर सदा बहार नगमे। सुनिए सखी सहेली कार्यक्रम। 4 पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे में सुनिए अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का दूसरा भाग। प्रस्तुति है कल्पना शेट्टी की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। छह बजकर 35 मिनट पर सुनिए संध्या रंजन। 7 सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। 8 हवा महल में सुनिए झलकी, जीभ की तपस्या। लेखन है डॉक्टर कुमारी का। निर्देशन है स्वतंत्र कुमार ओझा का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 सुनिए आपके लिए कार्यक्रम। रात 10 छाया गीत कार्यक्रम पेश होगा। आलेख और स्वर है ममता सिंह का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वन गमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 221।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: वायलिन और सारंगी के बाद गज वाला वाद्य इसराज प्रचलित है। इसराज का यही राज है कि यह कब बना, कहां बना और किसने बनाया यह कोई नहीं जानता। कुछ विद्वानों का मत है कि यह सारंगी और सितार का मिश्रण है। कुछ गुणियों का मानना है कि यह सारिंदा और सारंगी का मिश्रण है। कुछ संगीतज्ञ इसकी उत्पत्ति का आधार केवल सारंगी मानते हैं। जो संगीतज्ञ सारंगी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं उनका इस संबंध में कहना है कि मुगल काल में महिलाएं जब हरम में गायन किया करती थी तब उन्हें सारंगी की संगति उपलब्ध नहीं हो पाती थी, क्योंकि सारंगी वादक अधिकतर पुरुष ही हुआ करते थे। महिलाएं सारंगी बजाने में असमर्थ हुआ करती थी, क्योंकि सारंगी यह वादन में कठिन ही नहीं बल्कि वह नाखूनों की सुंदरता को भी नष्ट करती थी। इसीलिए सारंगी के ऊपरी भाग को कुछ लंबा कर इसमें पर्दे लगाए गए। इसराज की उत्पत्ति के संबंध में एक मान्यता यह भी है कि सारंगी सामान्यतः कोठों पर बजाई जाती थी। रावण हत्था, सारिंदा तथा चिकारी आदि गजवाद्य लोक संगीत में प्रयुक्त किए जाते थे। इसलिए अपने लिए गज का एक नया सुविधाजनक वाद्य निर्माण करना था, जिसे उसने इसराज नामक वाद्य बनाकर किया। प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में इसराज का उल्लेख नहीं मिलता है। 18वीं शताब्दी तक उर्दू एवं बांग्ला कृतियों में भी इस वाद्य का वर्णन उपलब्ध नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि यह एक आधुनिक वाद्य है। यह भी संभव है कि इस वाद्य की निर्मिति मयूर या ताऊस वाद्य के आधार से की गई हो। तो आइए अब हम अलाउद्दीन खां का इसराज वादन सुनते हैं। राग है भैरव।

अब हम इसके आकार और प्रकार पर विचार करेंगे। इस वाद्य के तीन आकार प्रचलित हैं। इसमें कुंडी और दांड के दो मुख्य भाग होते हैं। इनका नाप अलग-अलग होता है। कुंडी के ऊपर सारंगी के समान चमड़ा मढ़ दिया जाता है। इसी चमड़े पर घुरज की स्थापना करते हैं। दांड में 16 से 19 तक पर्दे लगाए जाते हैं। इस राज में सामान्यतः मुख्य चार तार होते हैं। बाज के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर में, इसके बाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाया जाता है। इसमें तरप के तार भी लगाए जाते हैं, जिनकी संख्या 15 से 20 तक होती है। इन तरपों को राग के अनुसार अथवा अचल थाट में मिलाया जाता है। तरबों के लिए पीतल के स्थान पर फौलाद के तारों का प्रयोग किया जाता है। इस राग को बजाने का यह तरीका है कि इसको पालथी मारकर उसकी कुंडी को नीचे की ओर रखकर या फिर गोद में रखकर या घुटने पर टिकाकर वादन करते हैं। दाहिने हाथ में गज पकड़कर तारों पर गज संचालन किया जाता है। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से स्वर निकाले जाते हैं। रविंद्र संगीत में इसका प्रयोग बहुत ही किया जाता है। इसलिए इस राग को बंगाल की सारंगी भी कहते हैं। कुछ कलाकार इस पर एकल वादन कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। अब हम श्री आशीष बंदोपाध्याय का इस राग पर बजाया गया राग जौनपुरी सुनते हैं।

गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: ये अमानत फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल सलिल चौधरी का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सजा फिल्म से सुन रहे थे आप संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना राजेंद्र कृष्ण के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हेमंत कुमार की आवाज में सुन रहे थे शिकस्त फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

0: गाइए ना।
1: दिल की उमंगे हैं जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

0: हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज़ों में आप सुन रहे थे मुनीम जी फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, संगीत सचिन देव बर्मन का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना हिल स्टेशन फिल्म से। एसएच बिहारी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत।

डिटेक्टिव फिल्म से आप सुन रहे थे गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना, शैलेंद्र के बोल मुकुल रॉय का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

एफएमएन के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए पेश है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत इस सुविचार से करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, नुकसान से निपटने के सबसे जरूरी चीज़ है उससे मिलने वाले सबक को न भूलना, वो आपको सही मायने में विजेता बनाता है। इस सुविचार के बाद आइए श्रोताओं जानते हैं आज का इतिहास।

श्रोताओं, आज है 16 जून। 16 जून 1606 में जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव को लाहौर में भयंकर यातना देकर आज ही के दिन मार डाला गया था। 16 जून 1858 में आज ही के दिन प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुरार की लड़ाई लड़ी गई थी।

16 जून 1983 में छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और आज ही के दिन 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी थी। 2007 में ही आज ही के दिन 16 जून को एड्स पर जागरूकता फैलाने के लिए शिल्पा शेट्टी को सिल्वर स्टार अवार्ड से नवाजा गया था।

श्रोताओं, अब उनके बारे में आइए जान लेते हैं जिनका आज के दिन जन्मदिन होता है। 16 जून 1976 में रोहित श्रीवास्तव का जन्म हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा वैज्ञानिक थे। और 16 जून 1936 में अखलाक मोहम्मद खान यानी कि शहरयार का भी जन्म हुआ था, जो उर्दू के मशहूर शायर थे। और आज के दिन 1931 में डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा का जन्म हुआ था, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। 1920 में आज के दिन हेमंत कुमार का जन्म हुआ था, जो हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध पार्श्व गायक और संगीतकार थे। और 1950 में आज के दिन मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ था, जो हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता हैं।

श्रोताओं अब आइए जानते हैं जिनकी आज के दिन पुण्यतिथि है। 16 जून 2021 में चंद्रशेखर वैद्य का निधन हुआ था, जो भारतीय सिने अभिनेता थे। और आज ही के दिन 1925 में चित्रंजन दास का भी निधन हुआ था, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 16 जून 1944 में प्रफुल्ल चंद्र रॉय का निधन हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्हें रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। आप सभी को विनम्र श्रद्धांजलि आकाशवाणी परिवार की ओर से। श्रोताओं भाई कार्यक्रम में सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। जैसा कि आज हमने बताया, आज पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का जन्मदिन है, तो उन्हीं की आवाज़ में ये गीत सुनते हैं मुनीम जी फिल्म से।

क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं?

0: Ik maar aan.
1: Tilke omange hai jawan. Rang mein duba hai samaan.

मुनीम जी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज़ों में, साहिर के बोल और एचडी बर्मन का संगीत। श्रोताओं अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का हाल और साथ ही साथ मौसम का पूर्वानुमान। पहाड़ी इलाके के लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवा। रोहतास प्रखंड के समहुता गांव में रविवार को

ये गीत आप सुन रहे थे हिमंत कुमार और गीता दत्त की आवाजों में, साहिर के बोल और एसडी बर्मन का संगीत। श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का हाल और साथ ही साथ मौसम का पूर्वानुमान। पहाड़ी इलाके के लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवा। रोहतास प्रखंड के समहुता गाँव में रविवार को एडीएम हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, उदय यादव, वशिष्ठ सिंह, पूर्व विधायक ललन पासवान, अजय यादव, अस्पताल डायरेक्टर राजबली सिंह ने दीप जलाकर संयुक्त रूप से किया। अस्पताल शुरू होते ही समहुता सहित आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों के हजारों लोगों को अब आपातकाल में इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल के निदेशक राजबली सिंह ने बताया कि एडीएम हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर को इसी मकसद से खोला गया है कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के लोगों को समय पर प्राथमिक और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा मिल सके। अभी तक सामान्य बीमारी या चोट लगने पर भी लोगों को सासाराम, डेहरी या डेहरी वाराणसी तक जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों खर्च होते थे। प्रखंड स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा। प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक सद्भावना भवन सासाराम प्रखंड में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सिकंजय सिंह ने की। बैठक में अध्यक्ष ने बाबू निशान सिंह शहीद स्मारक स्थल अतिक्रमण मुक्त करने हेतु घनसाडी पंचायत सरकार भवन चारदीवारी दीवार फटने के जांच प्रतिवेदन, पंचायत स्तर पर बंद सोलर लाइट चालू करने की बात कही। उपाध्यक्ष राकेश रंजन ने गर्मी से पागल कुत्ते के काटने और अस्पताल में दवा उपलब्धता पर चर्चा किया। ग्रामीण अंतिम संस्कार स्थल पर स्वच्छता, चापाकल और बिजली सुव्यवस्थित घनसाडी के स्वास्थ्य केंद्र, लाभार्थी वृद्धा पेंशन को 4 साल से बंद पड़े पेंशन योजना, धौदाड़ पोखरा अतिक्रमण, सिंचाई परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मापतौल का शिविर लगाकर रिन्यूअल करने सहित कई बिंदुओं पर विचार किया गया। बैठक के मौके पर अन्य सदस्य मौजूद रहे। और श्रोताओं, आइए जान लेते हैं मौसम का हाल।

श्रोताओं, आज सुबह सूर्योदय हुआ 5:02 पर और सूर्यास्त होगा 6:42 पर। आज दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने वाला है और रात का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री। दिन में तेज धूप निकलेगी, गर्म हवा के साथ लू चलने और कहीं कहीं तेज हवा के साथ वर्षा की भी संभावना है। और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा गीत। 20 साल बाद फिल्म से अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गीत है, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

20 साल बाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं विभिन्न समाचार पत्रों में छाई आज की सुर्खियों को। चारों अखबारों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं, जिनमें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और प्रभात खबर शामिल है। आज दैनिक जागरण की सुर्खी है, शहरों में अब बन सकेगी ऊंची और अधिक क्षमता वाली इमारतें। बिहार सरकार के नए बिहार बिल्डिंग बायलाज 2026 के मसौदे में भवन निर्माण को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब अधिकांश क्षेत्रों में भवनों के लिए फ्लोर एरिया रेशियो और भवन की अधिकतम ऊंचाई पर पहले जैसी सख्त सीमा नहीं रहेगी। इससे शहरों में ऊंची और अधिक क्षमता वाली इमारतों के निर्माण का रास्ता खुल जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिल्डिंग बायलाज 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिस पर आपत्ति और सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद इसे स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल के ध्यानार्थ भेजा जाएगा। दैनिक जागरण की ही सुर्खी है, विद्यार्थी सीखेंगे मिट्टी परीक्षण, स्थापित होगी प्रयोगशाला। कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों में अनुसंधान एवं प्रयोगात्मक क्षमता विकसित करने के साथ किसानों को मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने संबंधी योजनाओं की सोमवार को विस्तृत चर्चा की गई। मीठापुर स्थित कृषि भवन में हुई समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 629 विद्यालयों में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला स्थापित करने के निर्देश दिए। इस दौरान मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। राज्य के कुल 160 पीएम श्री एवं राजकीय विद्यालयों में मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा चुकी है। इस पहल का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को मिट्टी परीक्षण की वैज्ञानिक प्रक्रिया से जोड़ना तथा कृषि एवं पर्यावरण के प्रति उनकी समझ को विकसित करना है। अब चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2026-27 में इस कार्यक्रम का व्यापक विस्तार करते हुए राज्य के कुल 629 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएगी। प्रभात खबर की सुर्खी है, 15 जुलाई से 2100 रुपए में हेलीकॉप्टर से पटना की सैर। जी हाँ, पटना के सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण कराने के लिए 15 जुलाई से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। यह सुविधा लोगों को मात्र 2100 रुपए में मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार हेलीकॉप्टर से ही पटना से राजगीर, तुतला भवानी वाटरफॉल, बोधगया, मां मुंडेश्वरी मंदिर, वाल्मीकि नगर, टाइगर रिजर्व देखने की सुविधा मात्र 6000 रुपये में शुरू करने जा रही है। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन बढ़ेगा और बिहार की आर्थिक स्थिति बदलेगी। प्रभात खबर की दूसरी सुर्खी है, जिले के बालूघाट 3 माह के लिए बंद, 15 अक्टूबर से फिर शुरू होगा संचालन। रोहतास जिले के सभी बंदोबस्त बालू घाटों का संचालन 15 जून से अगले 3 माह के लिए बंद कर दिया गया है। अब इन घाटों से बालू का उठाव नहीं हो सकेगा। नियमों के तहत मानसून अवधि को देखते हुए बालू खनन और उठाव पर रोक लगाई गई है। बालू घाटों का संचालन अब 15 अक्टूबर से दोबारा शुरू किया जाएगा। ऐसे में जिले के लोगों को निर्माण कार्यों के लिए फिलहाल स्टॉक स्टोर और पूर्व में भंडारित बालू पर निर्भर रहना होगा। जानकारी के अनुसार जिले के 20 बालू घाटों में से केवल 10 घाटों की ही नीलामी हो सकी थी। इसमें भी वर्तमान समय में 8 घाटों का संचालन किया जा रहा था। 15 जून से सभी संचालित घाटों को बंद कर दिए जाने के बाद अब सीधे घाटों से बालू की आपूर्ति बंद हो गई है। इसका असर निर्माण कार्य पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बालू की मांग बढ़ने से कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू और मैथिली की भी पढ़ाई। सूबे के 9 सृजित 211 डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र में उर्दू और मैथिली विषयों की भी पढ़ाई होगी। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने विभिन्न प्रखंडों में 9 सृजित 211 सरकारी डिग्री महाविद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र से उर्दू और मैथिली विषयों की पढ़ाई प्रारंभ किए जाने का निर्देश सोमवार को दिया। उल्लेखनीय है कि इन महाविद्यालयों में 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में फिलहाल 6 विषयों की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय शामिल थे। ये सारे विषय कला संकाय से जुड़े हुए हैं। 4 विषय के

भाषा से संबंध। राज्यपाल ने वहां आगामी शैक्षणिक सत्र से उर्दू एवं मैथिली को भी अध्ययन अध्यापन के विषयों में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। इन दोनों विषयों के बाद अब इन कॉलेजों में 8 विषयों की पढ़ाई प्रारंभ होगी, जिनमें से 4 विषय केवल भाषा के संबद्ध होंगे। और श्रोताओं, भाई जान लेते हैं अर्थ जगत और खेल जगत का हाल। सबसे पहले जानते हैं खेल जगत का हाल। तलवारबाजी में होंगी भवानी पर नजरें। दिल्ली में 19 से 24 जून तक होने वाली एशियाई सीनियर तलवारबाजी में ओलंपिक पदक विजेताओं समेत 34 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। भारतीय चुनौती की अगुवाई ओलंपियन भवानी देवी सावरे करेंगी, जिन्होंने 2023 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। भारत में पहली बार यह टूर्नामेंट हो रहा है, जो इस साल के आखिर में जापान में होने वाले एशियाई खेलों का सीधा क्वालिफायर भी है। और अब जानते हैं अर्थ जगत का हाल। महंगे ईंधन और ऊर्जा के कारण मई महीने में थोक महंगाई बढ़ी। पश्चिम एशिया संकट का असर बीते महीने के थोक महंगाई सूचकांक पर देखने को मिला है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते मई में थोक महंगाई दर सालाना आधार पर 9.68% रही, जो अप्रैल में 8.26% रही थी। मासिक आधार पर सीधे थोक महंगाई में 1.42% की वृद्धि दर्ज की गई। थोक महंगाई के आंकड़े बताते हैं कि मई में सबसे अधिक ईंधन एवं ऊर्जा श्रेणी में 30.33% की महंगाई दर्ज की गई, जिसका असर अन्य क्षेत्रों पर भी देखने को मिला। वैसे विनिर्माण क्षेत्र की महंगाई दर 7.48% रही और प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी में महंगाई दर 4.99% दर्ज की गई। इससे साफ है कि पेट्रोल डीजल सीएनजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर थोक महंगाई को बढ़ाने में सबसे अधिक रहा, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद की महंगाई 49.82% रही, जबकि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की महंगाई 61.51% तक पहुँच गई। और श्रोताओं, इसी के साथ नमस्ते रोहतास का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। एक नए अंक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, समाचार प्रभात के लिए भाई आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज।

0: और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये होर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की 0 सहिष्णु

0: तालीम नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनुप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1,000 रिक्तियों के लिए 13,000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन

0: सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया, अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: इफ्रमैन के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्रों से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हो चुके हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

लीडर फिल्म का ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद का संगीत था। श्रोताओं, इसी के साथ देशभक्ति संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। सुबह के 8:20 हो चुके हैं और श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम फरमाइशी पत्रों पर आधारित पसंद आपकी, जो कि है हम सभी का पसंदीदा कार्यक्रम। तो चलिए, आपने जो पत्र भेजा है उसे इस कार्यक्रम में हमने शामिल कर लिया है। पहला गीत जो है हम आपको सुनवाने वाले हैं वो आंखें फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में है और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है फुटानी चौक नरहन एस्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, आराध्या और लल्लू पंडित ने। मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से इसी गीत को सुनना चाहते हैं फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित, सुमित छोटू और भी।

के सुरगनैया। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं और ये हमारे श्रोता है नरहन स्टेट से ही नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता अनुपम और विनीता मिश्रा, साथ में स्नेहलता जैन, इन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है तो चलिए आपको भी हम सुनवा रहे हैं आंखें फिल्म का ही गीत। और एक और पत्र ले लेते हैं, इन्होंने भी कोई भी गीत सुनना चाहा है। ये श्रोता है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के, अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर। तो चलिए आप सभी सुनिए आंखें फिल्म का ये गीत।

आंखें फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं फिल्म आवारगी का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। कुछ और पत्र शामिल कर लेते हैं। ब्रह्मपुरा मनीगाछी से ये हमें पत्र भेजा है भाई अच्छेलाल राय ने, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार ने। इन्होंने लिखा है अपनी पसंद से कोई भी गीत सुनवा दे। तो चलिए आपको भी हम सुनवा रहे हैं आवारगी फिल्म का ही खूबसूरत गीत। और एक और पत्र है, ये लिखने वाले हमारे श्रोता हैं लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और त्रिपति। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, लेवई से हैं गुलाबदास मानिकपुरी और दतरंगी से हैं भागवत वर्मा। इन्होंने अपनी कोई पसंद नहीं लिखी है। तो चलिए आप सभी को सुनवा रहे हैं आवारगी फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, भाई सुनते हैं अगला गीत हाथी मेरे साथी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है भाटा पारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। एक और पत्र ले लेते हैं। ये पत्र आया है नाज मंजिल मैसोल सीतामढ़ी बिहार से। इन्होंने लिखा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें और आप हैं अकरम हुसैन, इशरत अकरम, रुबीना परवीन, अरहान, हमजा तैमूर, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, साहिन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। कोकिलवारा उराई जिला मुजफ्फरपुर से हैं फैसल शेख और नुजहत जहां नाज। कांति निकेतन राजनगर से हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता। तो चलिए, इन्होंने भी अपनी कोई पसंद नहीं लिखी है, तो आप सभी सुनिए हाथी मेरे साथी फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

0: और श्रोताएं हाथी मेरे साथी फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही पसंद आपकी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं अब आइए आपको लेकर चलते हैं प्रादेशिक समाचार के लिए आकाशवाणी के पटना केंद्र।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
3: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
2: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेशवासियों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आज से 18 जून तक सभी प्रखंडों में सहयोग सह जन कल्याण शिविरों का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेल आज और कल 14 विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। और मॉनसून की रफ्तार थमने से दक्षिण बिहार में गर्मी का असर फिर बढ़ा। 41.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर आज से प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। 18 जून तक चलने वाले इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, ईकेवाईसी तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सिवान में आयोजित शिविर में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: शिविर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, लखपति दीदी, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान और छात्रवृत्ति योजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। शिविर में 25 विभागों के अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे, जिस पर संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। शिविरों में हेल्प डेस्क, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की सहायता और स्वास्थ्य जांच शिविर की भी व्यवस्था रहेगी, जिससे लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन और सेवाएं आसानी से मिल सकें। लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर शिविर में पहुंचें, ताकि योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के प्राप्त किया जा सके। समाचार कक्ष से सविता पारीख।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की है। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि आगामी 15 जुलाई से प्रदेशवासी हवाई सेवा के माध्यम से ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण कर सकेंगे।
2: 15 जुलाई से मैंने टारगेट किया, एक टूरिज्म की व्यवस्था खड़ा करूंगा और पटना सिर्फ देखने के लिए जाए, राइड करने के लिए हेलीकॉप्टर में मात्र 2100 रुपया देगा। और पटना से चाहे वो राजगीर हो, मुंडेश्वरी माता का मंदिर हो, चाहे पुतला भवानी का मंदिर हो, इन तमाम जगह को जाने के लिए भी हमने कहा है कहीं हेलीकॉप्टर लगाइए और बिहार के लोगों को बिहार की खूबसूरती दिखाने के लिए मात्र 6000 रुपया में सबको हेलीकॉप्टर की सेवा भी देने का काम।
0: पूर्व मध्य रेल 17 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र

0: और पटना जंक्शन सहित विभिन्न स्टेशनों से 14 विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। एडीजी रेल डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने बताया कि परीक्षा में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए आज और कल विभिन्न रूटों पर ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पाटलिपुत्र जंक्शन और पटना जंक्शन से अररिया, नौगछिया, भभुआ रोड, गया, बक्सर, राजगीर और झाझा सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। इस बीच पाटलिपुत्र जंक्शन पर तोड़फोड़ और पथराव मामले में रेल पुलिस ने 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। रेल पुलिस के अनुसार घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों तक चीट पहुंचाने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में नवादा से 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें जैमर ऑपरेटर और बायोमेट्रिक एजेंसी से जुड़े कर्मी शामिल हैं। मामले में कुल 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि इसी भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को भागलपुर से भी गिरफ्तार किया जा चुका है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन हुआ है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बिहार ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। राज्य में जनधन खातों में जमा राशि 30,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार बिहार 6,87,00,000 जनधन खाते के साथ देश भर में दूसरे स्थान पर है। इस मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में शीर्ष पर है। इधर बैंकिंग सेवाओं की भागीदारी में भी बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है। प्रदेश के 629 पीएमश्री और राजकीय विद्यालयों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में बताया कि इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से कक्षा 7 से 11वीं तक के छात्र छात्राएं मिट्टी परीक्षण, नमूना संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य के 160 विद्यालयों में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून का प्रसार थम गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले तीन दिनों से मॉनसून की उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर से आगे नहीं बढ़ सकी है। मॉनसून की सक्रियता में कमी आने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई।

0: है।
1: राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पथ निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया मूल रूप से स्वीकृत अलाइनमेंट के अनुसार ही चल रही है। प्रदेश की लगभग 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच और रोगों की पहचान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के साथ आशा सर्टिफिकेट प्रदान करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के माध्यम से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद लिखित और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित होगी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में बिहार और मध्य प्रदेश ATS ने संयुक्त कार्रवाई में मधुबनी से एक मदरसा शिक्षक को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार आरोपित इजहारुल हक पर पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में रहकर गोपनीय सूचनाएं साझा करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उसके ठिकानों पर तलाशी ली गई, जहां से 2 मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 127 शराब माफिया की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय को प्रस्ताव भेजा है। ब्यूरो के DIG अजय कुमार पांडे ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी।
2: कुल 127 लोगों के विरुद्ध BNSS धारा 107 के तहत उनकी संपत्ति जब्ती करने की कार्यवाही भी हम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मादक पदार्थ के जो बड़े बड़े सेलर हैं इनके विरुद्ध। जिले में 89 मादक पदार्थ कारोबारी के विरुद्ध पिट NDPS एक्ट की कार्यवाही का प्रपोजल हम लोगों ने बढ़ाया है और हो जाएगा और उन्हें निरुद्ध किया जाएगा जेलों में।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2026 में राज्य पुलिस ने प्रतिमा औसतन 3,50,000 लीटर से अधिक शराब बरामद की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। वहीं मद्य निषेध ब्यूरो की बरामदगी में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मई तक मद्य निषेध अधिनियम के तहत 57,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें लगभग 20,000 कारोबारी शामिल हैं। पटना में CBI की विशेष अदालत ने चर्चित अलकतरा घोटाले के एक मामले में ट्रांसपोर्टर DN सिंह को दोषी करार देते हुए उन पर 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में पथ निर्माण विभाग के 3 पूर्व कनीय अभियंताओं को बरी कर दिया गया। भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि जिले के जिन प्रखंडों में 20 सूत्री कार्यालय नहीं हैं, वहां जल्द ही कार्यालय उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जिले के प्रभारी मंत्री सह 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष नीतीश मिश्रा की उपस्थिति में आयोजित बैठक में श्री चौधरी ने कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी प्रखंडों में इस संबंध में बैठक आयोजित की जाएगी। किशनगंज जिले में पुलिस ने रामपुर चेक पोस्ट पर 1,40,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से लगभग 700 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका और ईरान समझौते के लिए सहमत, स्विट्जरलैंड में 19 को किए जाएंगे हस्ताक्षर। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 का मसौदा तैयार, शहरों में अब बन सकेंगी ऊंची और अधिक क्षमता वाली इमारतें। दैनिक भास्कर लिखता है, दीपक प्रकाश मामले में सुप्रीम कोर्ट का सरकार और आयोग को नोटिस। प्रभात खबर ने लिखा है, पूरे दक्षिण बिहार में 20 तक गर्मी से राहत नहीं। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पटना आरा में भीषण गर्मी के बीच स्कूलों का समय बदला।

0: आज अखबार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सारे कोचिंग सेंटर हो जाएंगे बंद। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदेशवासियों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आज से 18 जून तक सभी प्रखंडों में सहयोग सह जन कल्याण शिविरों का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेल आज और कल 14 विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। और मॉनसून की रफ्तार थमने से दक्षिण बिहार में गर्मी का असर फिर बढ़ा, 41.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे प्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एफएमबैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम संबंधी जानकारी ले लेते हैं।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह 9:10 पर आप गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। सुबह 9:30 पर हम विविध भारती के कार्यक्रम के लिए हम चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह 10:00 दिल्ली से हिंदी

समाचार प्रसारित होगा और सुबह 10:05 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम आवाज। संकलन और स्वर होगा मुमताज अहमद का, प्रस्तुत करता होंगे संतोष कुमार। सुबह 10:30 पर आप सुनिएगा भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी, और सुबह 10:45 पर आप सुनिएगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार।

दिन में 11 बजे सुनिएगा आकाशवाणी मुंबई से प्रसारित विविध भारती का कार्यक्रम रंग तरंग। दिन में 12 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। शाम 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे वंदन, और शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, और शाम 6 आप सुनेगा भोजपुरी लोकगीत। शाम 6:05 पर पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन प्रसारित होगा। शाम 6:10 पर हम लेकर आएंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसमें आज के सूत्रधार होंगे राजेंद्र प्रसाद और कुमकुम। प्रस्तुतकर्ता होंगे कार्यक्रम के संतोष कुमार। और शाम 6:40 पर सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और ज़िले की हलचल का प्रसारण होगा। और शाम 7:50 पर आप सुनिएगा ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद।

रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा, जो हमारे केंद्र से रिले होगा। रात्रि 9:00 लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे और रात्रि 9:15 पर महफिल में गजलों का आनंद लीजिएगा। रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से और रात्रि 10:00 आप सुनेगा हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसरंग। रात्रि 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी नगमों का आनंद लीजिएगा और रात्रि 10:55 पर अगले दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आपको जानकारी दी जाएगी। रात्रि 11:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे। सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं गीत मालिका कार्यक्रम में खूबसूरत फिल्मी नगमे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में सुनते हैं ये गीत मोहब्बत हो ना जाए फिल्म से।

मिस्टर आशिकी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में इंद्रवर के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था। भाई सुनते अगला गीत खलनायक फिल्म से, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: खलनायक फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ ही श्रोताओं गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। श्रोताओं अब आइए चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।
1: कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है। ऐसी

0: भूल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके

0: आई।
1: हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है?

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहां सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

1950 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है। कुछ खास गानों में यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिल

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद

0: मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया के निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुख और समृद्धि के दरवाजे धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही खुलते हैं। संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक निर्णय में पूर्ण विवेक आवश्यक है, क्योंकि सोच समझकर उठाया गया कदम सफलता की नींव बनता है। उन्होंने कहा कि बिना विचार किए गए जल्दबाजी में कोई निर्णय या कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घोर विपत्तियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक निर्णय में विवेक का प्रयोग करने पर बल दिया। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबोला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आवाज़।

दोस्तों नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज के इस अंक में आपका स्वागत है। हम हैं आपके दोस्त मुमताज अहमद। दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है आम लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे सासाराम प्रखंड के करसेरुआ गांव के लोगों से की गई बातचीत। दोस्तों सफाई क्यों ज़रूरी है, इसका आकलन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि जो इलाका साफ रहता है, नाली गली की सफाई एक अंतराल के बाद होती रहती है, उस क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। इसलिए दोस्तों हमें भी अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई पर ध्यान देते रहना चाहिए ताकि बीमारी फैलाने वाले कीड़े को किसी भी तरह से पनपने का मौका न मिल पाए। यदि ये कीड़े पनपने लगेंगे, इनकी संख्या बढ़ने लगेगी, तो हमें किसी न किसी तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। हम बीमार होने लगेंगे, आसपास के लोग बीमार होने लगेंगे और बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए हम अपने आसपास के क्षेत्र को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें। दोस्तों रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के करसेरुआ गांव के लोगों से हमने बात की। करसेरुआ गांव करसेरुआ पंचायत में पड़ता है और सासाराम दरी गांव

0: पर अवस्थित है, या ये कहिए कि सासाराम दरिगांव पथ करसरुआ गांव के बीचों बीच से गुजरता है। आने जाने में तो कोई परेशानी नहीं होती है, फिर भी हमने गांव के लोगों से जानना चाहा कि करसरुआ गांव में नाली, गली, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए अभी तक क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आइए सुनते हैं करसरुआ गांव के लोग अपने गांव में मिल रही सुविधाओं के बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। नाम अपना बता दीजिए।
1: नाथुन सिंह।
0: गांव का नाम?
1: करसरुआ।
0: पंचायत?
1: करसरुआ।
0: सबसे पहले आप अपने गांव के गली के बारे में बताइए। आपके गांव की सभी गलियों का पक्कीकरण हो चुका है या कुछ गली बनानी अभी बाकी है?
1: अभी और बनाना है, गली कुछ बना है और बाकी भी है।
0: कुछ बनी है और कुछ बाकी भी
1: जी
0: है। जो जो गली बन चुकी है आपके गांव में अभी तक, उसमें परेशानी होती है कि नहीं?
1: परेशानी होती है कि जो गली बना है उसमें चारों तरफ से मतलब आदमी इंक्रोचमेंट करके रखा है,
0: इसकी वजह से परेशानी हो
1: जी। रोड बना है मान लीजिए 8 फीट का, 8 फीट के बाद जो है चौतरा सीढ़ी बांध करके आदमी जाम कर,
0: इस वजह से परेशानी जी। आपके गांव में जो गली नहीं बनेगी है, आपके गांव की जिन गलियों का पक्कीकरण नहीं हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उसको कहेंगे कि मतलब वो भी बन करके तैयार हो जाए, पक्कीकरण हो जाए, ताकि आदमी को आराम मिले।
0: नाली बनेगी ही आपके यहाँ की गलियों में?
1: गली में नाली बना है, लेकिन नाली बनाने वाला सही नहीं बनाया है। कारण है कि वो किसी के जगह पर ऊंचा कर दिया, किसी के दरवाजे पर खाल कर, तो नाली का पानी ऐसा होना चाहिए कि निकलते जाए।
0: नाली सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बनाएगी
1: जी? नहीं,
0: इसकी वजह से पानी जमा रहता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: घर का पानी नहीं निकल पाता,
1: पूरा
0: है।
1: नहीं निकल पाता है,
0: गली में भी जमा रहता है
1: जी।
0: जिन गलियों में नाली नहीं बनाई गई है, उन गलियों के लोग अपना पानी कैसे निकालते हैं?
1: उसी तरह निकलता है, अपना जाम रहता है, किसी के दरवाजा पर जाम हो जाता है, कोई परेशानी
0: गली में भी बहता रहता है
1: जी।
0: तो आने जाने परेशानी होती?
1: बहुत परेशानी है।
0: बिजली रहती है कि नहीं आपके यहाँ?
1: बिजली रहता है।
0: बिजली रहता है,
1: बिजली रहता है। किसान के लिए बिजली जो कटौती होता है वो बहुत परेशानी होता है, इसलिए कि हम लोग के यहाँ दुर्गावती जलाशय योजना का जो पानी आता है समय से नहीं पहुंच पाता है। आता भी है तो यहाँ पहुंचते पहुंचते लास्ट होता है, तब पर भी पानी का सही कब होता है, जब उधर बाढ़ हो जाता है तो पानी इधर ठेल देते हैं।
0: यानी कि आप लोग पूरी तरह से बिजली पर निर्भर हैं या प्राकृतिक पानी पर?
1: प्राकृतिक पानी पर,
0: बारिश के पानी
1: जी। अब यहाँ पर ऐसा नलकूप भी नहीं है कि मान लीजिए कि नलकूप भी अब अपना अपना आदमी जो साधन जिसके पास पैसा है वो करा लिया है, जिसके पास नहीं है। अब मान लीजिए अब ये बोरिंग है, ये बोरिंग है, ये बोरिंग है, ये तीन बोरिंग से समझ लीजिए कि वहाँ इतना दूर का पटवन इससे किया जाता है। अब अगर मान लीजिए बीच में हो जाए तो और सुविधा मिलेगा।
0: कौन कौन सी फसल लगाते हैं आप लोग?
1: हम लोग के यहाँ धान, गेहूँ, चना, सरसों, मटर, यही सब लगता है। अभी में देखिए रहे हैं मूंग का खेती किए हैं।
0: सब्जी की खेती होती है कि नहीं आपके यहाँ?
1: सब्जी की खेती होता है, जो डीह है डीह पर होता है, खेत में आदमी नहीं कर पाता है, इसलिए कि चरा ही थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर नीलगाय जो है वो भी परेशान करती है। अब बताइए रात में इधर नीलगाय चल आती है।
0: पहाड़ के करीब में बसा हुआ आप लोग?
1: जी जी, गांव में इतना स्थिति भयावह इस समय हो गया है कि एक औरत गिर करके घायल हो गई है।
0: किस लिए?
1: बंदर के चलते।
0: बंदर,
1: इतना बंदर की संख्या बढ़ गया है कि समझ लीजिए कि काटने दौड़ जाता है, खाने तो किसी को खाने नहीं दे पाता है, छीन लेता है जबरदस्ती घर में घुस करके। अगर आदमी गेट ग्रिल नहीं लगाया है जिसके घर, उसके घर बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ सबके पास तो उपलब्ध नहीं ना है पूंजी।
0: बंदर आपके गाँव में
1: बहुत ज्यादा
0: जंगल में से आ जाते हैं?
1: यहीं पर अब बसेड़ बना लिया है, रहता है गांव में, डर से आदमी कोई नहीं कुछ कर पाता है।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
1: मिलता है, वही थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कभी कहीं, पाइप टाइप जो है सही पाइप नहीं सेटिंग हो।
0: कितनी बार सप्लाई होता है दिन भर में?
1: दिन भर में तीन बार।
0: तीन बार?
1: हाँ, तब पर भी दिक्कत आदमी को हो जाता है, तीन बार से पानी से तो होता नहीं, इसलिए गर्मी का टाइम तो और परेशानी है। कहीं कहीं चंपा कल भी था, वो भी अब बिगड़ गया है, उसको कोई मरम्मत का काम नहीं हो रहा है।
0: पीने के काम में लेते हैं आप लोग पानी?
1: जी, नल जल से पीने का काम चलता है।
0: अभी काफी गर्मी पड़ रही है
1: जी,
0: बारिश भी अभी नहीं के बराबर हो रही है, या नहीं हो, कभी कभी आंधी तूफान आ जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपके यहाँ की चापाकल हो या कुआं हो वो काम कर रही है या बंद हो चुकी है?
1: मान लीजिए बिगड़ा हुआ है तो कैसे होगा?
0: आपके यहाँ कुएं में पानी है अभी?
1: कुआं में पानी है, लेकिन पानी कमयाब, अब कुआं का पानी से कोई पीता नहीं है, इसलिए कि बचाव नहीं होता है, उसका गंदगी कीड़ा उसमें पड़ा हुआ है। पहले तो ब्लीचिंग पाउडर सरकार डलवाता था, अब तो वो भी नहीं हो रहा है।

0: कुआं सूखा नहीं है?
1: सूखा नहीं है, लेकिन और कुछ सूख भी गया।
0: कुछ सूखा भी है
1: जी।
0: आपके यहाँ कोई सरकारी विद्यालय है?
1: जी सरकारी विद्यालय है।
0: कितने क्लास तक पढ़ाई होती है
1: यहाँ? 8 तक पढ़ाई होता है।
0: 8 तक पढ़ाई होता है
1: जी।
0: उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं?
1: पैसा वाला आदमी तो कहीं पढ़ा लेता है, जो गरीब आदमी है, बस्ती गरीब का है, तो यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। सब ज़्यादा गरीबे यहाँ, 90% गरीबे है।
0: तो आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग बच्चों को कहाँ भेजते हैं 8वीं के बाद?
1: अब जहाँ तहाँ अपना भेजता है आदमी। अब वही मान लीजिए कि यहाँ का स्कूल के ज़रूरत है, हाई स्कूल बड़ा बस्ती है, पंचायत भी है, तो चला गया सकास में। तो सकास में जब गया तो यहाँ भी होना चाहिए, बड़ा बस्ती भी है, गरीब गाँव है, पूंजी वाला तो कहीं भी पढ़ा लेता है, लेकिन जो गरीब है वो कहाँ पढ़ाएगा।
0: सकास काफ़ी दूरी पर पड़ता है यहाँ?
1: हाँ, यहाँ से करीब 5 किलोमीटर पड़िए जाएगा।
0: आप ही के पंचायत में है?
1: जी अपना ही पंचायत में है।
0: बिजली रहती है आपके यहाँ?
1: हाँ बिजली रहता है। बिजली
0: वोल्टेज
1: रहता,
0: कैसा
1: है?
0: रहता है?
1: वोल्टेज अब डाउन होता है, कभी थोड़ा सा भी बारिश होता है ना, चाहे हवा आ गया, कब बनेगा कब आएगा फॉल्ट, तार जो है सही नहीं है, बिजली का तार
0: ठीक नहीं है
1: जी। नहीं
0: तो इसके लिए आप लोग कंप्लेन नहीं किए?
1: कंप्लेन बराबर होता है, लेकिन सुनवाई है उनको।
0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: और कहना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए।
0: नहीं है
1: जी? नहीं।
0: तो आप लोग इलाज कहाँ कराते हैं?
1: इलाज कराने के लिए सासाराम जाना पड़ता है, नहीं तो दरगाँव में है तो दरगाँव में डॉक्टर रहते हैं।
0: दरगाँव कितनी दूरी पर पड़ता है?
1: 2 किलोमीटर की दूरी।
0: नज़दीक है
1: जी।
0: गंभीर रूप से अगर कोई बीमार हो जाता है तो आप लोग कहाँ ले जाते हैं?
1: सासाराम ले जाना पड़ेगा।
0: सासाराम
1: से बेसी है तो बनारस जाना पड़ेगा।
0: सासाराम आने जाने के लिए सुविधा?
1: सुविधा क्या है, अब अपना एथू से जाते हैं आदमी, टेम्पू वगैरह अपन यही कुछ साधन से करके जाते हैं।
0: पक्की सड़क है ना सासाराम
1: जी?
0: जाने
1: पक्की
0: के
1: सड़क है। उसके बाद यहाँ पर पुस्तकालय होना चाहिए।
0: लाइब्रेरी?
1: लाइब्रेरी
0: है। लाइब्रेरी नहीं है
1: जी? नहीं।
0: अगर लाइब्रेरी नहीं है तो उससे क्या हानि हो रही है?
1: हानि है कि मान लीजिए कि लड़का थोड़ा उसमें अपना एथू करेगा पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे प्रोसेस उनको मिलेगा।
0: और कुछ कहना चाहेंगे अपने गांव के लिए?
1: जी पोखरा में छठ का पूजा होता है, छठ घाट, वहां पर मतलब उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए,
0: बनना जरूरी है
1: जी, बहुत जरूरी है।
0: दोस्तों अभी आप सासाराम प्रखंड के करसेरुआ गांव के लोगों से की गई बातचीत सुन रहे थे। करसेरुआ गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत सुनने से पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत, सनम बेवफा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म सनम बेवफा का ये गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। इसके गीतकार हैं सावन कुमार, संगीतकार महेश किशोर और आवाज़ है विपिन सचदेवा की।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विपिन सचदेवा की आवाज़ में फिल्म सनम बेवफा का ये गीत। अब आइए सुनते हैं सासाराम प्रखंड के करसिरुआ गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत। नाम अपना बता दीजिए।
1: कमता प्रसाद चंद्रवन से।
0: गांव का नाम
1: करसिरुआ, पंचायत करसिरुआ।
0: आप अपने गांव के गली के बारे में बताइए। सभी गली बन चुकी है या कुछ बाकी
1: नहीं,
0: है?
1: नहीं, गली नहीं बनी है। जो बनी भी हुई है उसमें क्या हुआ है कि बीच में से बना दिया गया है, जिसके चलते खाला पाकर ऊपर से जो पानी आता है गली का, वहाँ हचड़ा हो जा रहा है, पब्लिक को आने जाने में दिक्कत होता है।
0: और जो गली नहीं बनाई गई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उसको तो बनना चाहिए।
0: बनना चाहिए। बिजली रहती है कि नहीं आपके यहाँ?
1: बिजली रहती है।
0: बिजली रहती है। वोल्टेज कैसा रहता है?
1: वोल्टेज कभी कभी डाउन हो जाता है।
0: कभी कभी डाउन हो जाता है। बिजली बिल के बारे में बताइए।
1: बिजली बिल तो जो है तो ये 125 यूनिट फ्री ना है।
0: लाभ मिल रहा है?
1: लाभ मिल रहा है।
0: आपके यहाँ बिजली का तार वगैरह ठीक है या वो भी जर्जर है?
1: नहीं, तार की स्थिति गड़बड़ है।
0: क्या गड़बड़ है?
1: तार माने कि कमजोर हो गया है, सही सलामत नहीं है।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
1: नल जल का पानी तो जब सही सलामत रहता है मशीन तो मिलता है, फिर खराब हो जाता है तो उसको बनाने में महीनों लग जाता है, तो पब्लिक को कठिनाई होता है।
0: कितनी बार आता है पानी दिन भर में?
1: तीन बार।
0: तीन बार आता है। पीने के काम में आप लोग लेते हैं उस पानी?
1: उसको
0: को
1: यूज करते हैं।
0: यूज करते हैं। आपके यहाँ कौन से सरकारी विद्यालय है?
1: सरकारी विद्यालय जो है

0: मध्य विद्यालय,
1: 1 से 8 तक पढ़ाई होती है।
0: हाँ,
1: 1 से 8 तक पढ़ाई करने के बाद बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं?
0: बच्चे जाते हैं दरियाँ सकास।
1: अच्छा, दरियाँ या सकास जाना पड़ता है। आपके यहाँ जो विद्यालय है उसकी बिल्डिंग के बारे में बताइए, बाउंड्री है या नहीं, या पीने के लिए पानी उपलब्ध है कि नहीं विद्यालय में?
0: विद्यालय में बाउंड्री है, रूम भी है, और पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी,
1: सब कुछ ठीक है।
0: सब कुछ
1: आने जाने के लिए रोड?
0: रोड है।
1: आपके यहाँ जो विद्यालय है उसमें आप ही के गांव के बच्चे पढ़ते हैं या आसपास के गांव के भी आ जाते हैं?
0: नहीं, पड़ोस के भी गांव के लड़के पढ़ते हैं।
1: कुछ गांव का नाम बताइए जहाँ के आते हैं।
0: घरबैर, रंगपुर।
1: अच्छा, रंगपुर घरबैर से भी? हाँ,
0: बबूरा, खैरा।
1: अच्छा, इतनी दूरी से आते हैं?
0: खैरी।
1: आपके यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं?
0: नहीं है।
1: आप लोग इलाज कैसे कराते हैं पेशेंट का?
0: पेशेंट का अगर हल्का फुल्का बीमारी रहता है तो दरगाँव दिखाते हैं, नहीं तो सासाराम, उससे भी आगे जाना पड़ता है।
1: सासाराम जाना पड़ता है। खेती करते हैं आप?
0: खेती करते हैं।
1: कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
0: हम लगाते हैं धान, गेहूं, चना वगैरह वगैरह। माने सब्जी का खेती हम लोग नहीं करते हैं, मूंग की खेती किए हैं।
1: मूंग की खेती हुई है। पटवन कैसे करते हैं?
0: पटवन ओपन से करते हैं।
1: नहर का पानी नहीं आता है आपके यहाँ?
0: आता है।
1: नहीं आता है
0: ना।
1: बारिश के पानी पर निर्भर है।
0: हाँ।
1: और कुछ कहना चाहेंगे?
0: और कहना ये हम चाहेंगे कि हम लोग पहाड़ के तराई में बसे हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। यहाँ अगर किसी तरह का रोजगार नहीं है जिसके चलते ग्राम के जितने मजदूर वर्ग के आदमी हैं उनको सासाराम जाना पड़ता है। काम मिलता है तो ठीक, नहीं तो रिटर्न आना पड़ता है, कोई दिल्ली बम्बे जाता है। तो यहाँ अगर रोजगार, कल कारखाना अगर हो जाता तो आदमी के रोजगार मिल जाता, तब उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई में मदद मिलती।
1: आपके यहाँ के लोगों को इंदिरा आवास का लाभ मिला है या नहीं?
0: मिला है, पहले 5 साल से इधर नहीं आया है।
1: कुछ लोगों को मिला है?
0: हाँ।
1: करसेरुआ गांव के एक और व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
2: मेरा नाम नवनीत कुमार है।
1: गाँव का नाम?
2: करसेरुआ।
1: पंचायत?
2: करसेरुआ।
1: प्रखंड भी बोल दीजिए?
2: सासाराम।
1: आप अपने गांव के गली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी गली बन चुकी है या कुछ बनानी अभी बाकी है?
2: हम अपने हिसाब से अगर देखें और पूरे गांव के लोगों के तरफ से अगर उसको देखें तो कठिनाई होती है गली में, क्योंकि जो नलकूप की व्यवस्था की गई है गली के बीच में एकदम कर दी गई है और उसकी मरम्मत नहीं की गई है, जिसके वजह से वहाँ पर कीचड़ जम जाता है, नली का पानी बीच में आ जाता है और लोगों का आने जाने में कठिनाई होती है।
1: नाली बनेगी है सभी गलियों में?
2: बनाई तो गई है लेकिन उसके ऊपर बाउंड्री नहीं मारी गई, जिसके वजह
1: कवर नहीं है।
2: कवर नहीं, जिसके वजह से गली में पानी आ जाता है और जाम लग जाता है पानी का।
1: बिजली रहती है कि नहीं?
2: बिजली तो रहती है।
1: बिजली रहती है, बिजली का वोल्टेज कैसा रहता है?
2: मिनिमम।
1: मिनिमम रहता है। मोटर वगैरह नहीं चलती है?
2: मोटर चलता है।
1: चल जाती है ना। नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी मिल रहा है पीने के लिए?
2: मिल रहा है, 3 टाइम।
1: 3 टाइम मिलता है। पीने के काम में आप लोग लेते हैं?
2: हाँ, पीने के काम में करते हैं।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के करसेरुआ गांव के लोगों से की गई बातचीत। अब आइए दोस्तों, हम आपको एक और गीत सुनवाते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म में प्यासा सावन से। इसके गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और आवाज़ है दोस्तों लता मंगेशकर की।

दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ साथ जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है। आशा है सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक मदद के साथ साथ जनता का सहयोग भी मिलता रहेगा। दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। तो साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़ का ये अंक कैसा लगा, आप पत्र द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपने लिखा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी के साथ आप अपने रेडियो दोस्त मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। स्वर एवं संकलन मुमताज़ अहमद और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आवाज। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी।

आधी अधी रतिया के इस एल्बम से आप ये लोकगीत सुन रहे थे भरत शर्मा ब्यास की आवाज़ में। अगला गीत आइए सुनते हैं मदन राय की आवाज़ में।

और श्रोताओं मदन राय के गाय इस गीत के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अब श्रोताओं ये सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सुनील छैला बिहारी और शिल्पी राज की आवाजों में आप सुन रहे थे संदेश से पहले कांवरिया की भीड़, और उसके पहले हमने आपको सुनवाया था खुशी कक्कर और मोहन राठौर की आवाज़ में गीत। अब आइए सुनते हैं निधि मिश्रा की आवाज़ में ये अगला गीत।

और श्रोता मोहन राठौर के गाए इस गीत के साथ ही रसधार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के 11 बज चुके हैं। श्रोताओं, अब अगले कार्यक्रम के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।

हाल क्या है दिलों का, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। अनोखी अदा, ये था फिल्म का नाम।

जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। राजेश रेड्डी ने इसे लिखा था, संगीत दिया था जगजीत सिंह ने, और आईना ये था एल्बम का नाम।

0: लकी अली को अभी आप सुन रहे थे अक्स एल्बम से। ये गीत लिखा लकी अली ने और अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और लीजिए सुनिए अब ये गीत बरसात की रात फिल्म से।

बरसात की रात से कवाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रोशन का संगीत था।

तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर, कहां जाऊं।

0: दीवाना एल्बम से आप सुन रहे थे सोनू निगम को। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा था और साजिद वाजिद का संगीत था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल

0: उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के कंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

आलिशाज लव नोट, ये एल्बम से आप अभी ये गीत सुन रहे थे। आलिशा की आवाज में और साथ दिया था बाबुल सुप्रियो ने, संदीप चौटा ने संगीत दिया, नितिन रायकवार ने इसे लिखा।

शान और कविता कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे थे। इस गीत में दिल चाहता है फिल्म का नाम था, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

तलत अजीज की आवाज में ये रचना अभी आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, असद अली का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये रंग तरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य

0: सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की पहली जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

विजय और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। डिस्को डांसर फिल्म का नाम था अनजान, ने से लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। और आज इस प्रोग्राम में यादों की महफिल में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माए गीत, उनकी फिल्मों से गीत। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: गुलामी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, गुलजार ने इसे लिखा था। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फूल और अंगार फिल्म का नाम था। रानी मलिक ने इसे लिखा और अनु मलिक का संगीत।

फिल्म गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले की आवाज में। कुमार ने इसे लिखा था और अमर मोहिते का संगीत था। आप सुन रहे हैं इस वक्त यादों की महफिल विविध भारती से।

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल, ए आर रहमान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे युवराज फिल्म से। माफ कीजिए, श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और ए आर रहमान का संगीत था।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, प्यार झुकता नहीं फिल्म का नाम। एसएच बिहारी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

फिल्म गुरु से ये गीत अभी आप सुन रहे थे ए आर रहमान और चिन्मयी की आवाजों में गुलजार ने इसे लिखा। ए आर रहमान का संगीत था। आज यादों की महफिल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत हमने आपको सुनवाए। इसके साथ ही ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, आज आपके इस सफर में आपके संग। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है, जिसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही साथ उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं ये बताना है। तो ये तो आप बखूबी करते हैं और लंबी लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है, बहुत सारे गीत आ चुके हैं कि कौन कौन से होंगे। और आपको बता दें कि एक गीत की फरमाइश, या यूं कहें कि एक गीत को पहचाना है आपने बहुत अच्छे तरीके से, और हो सकता है उसी गीत से हमारी आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हो। देखते हैं आपकी ये लिस्ट और हमारी लिस्ट गीतों की कितनी मेल खाती है। साथ ही साथ उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो इबारत कुछ इस प्रकार है, कभी कभी यूं ही जिंदगी में मोहब्बत किसी अजनबी हसीना से मिल जाती है और दिल वीरान राहों पर ख्वाबों की रानी बनकर खिल जाता है। तुम्हारी याद में लिखे खतों के पन्नों पर हजारों रंग के नजारे उधर आते हैं जब तुम्हारे दो नयन मुस्कुराते हैं। मेरा दिल का चैन भी लौट आता है, ये जुल्फे रेशमी जाने कैसी खुशबू बिखेर जाती है। तुमने दिल को ऐसे चुरा लिया है कि सांसें भी तुम्हारा नाम गुनगुनाती है। बिगड़ जाए जब कोई बात, तेरा हाथ मेरे हाथ में हो अगर, तो शाम क्या हर रात फिर से सवेरा बन जाए। कतरा कतरा कर चलो हम एक कहानी में ढल जाए। तो इबारत एक बार फिर से आपके सामने पढ़ दी है और चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसका सबसे ज्यादा जिक्र मैसेजेस में आया है।

0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

एक अजनबी हसीना से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अजनबी फिल्म का नाम था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन की तर्ज थी। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और ये एक ऐसा गाना है जो हर किसी ने लिखा, यानी कि बहुत पॉपुलर। इसीलिए शुरुआत इसी गाने के साथ की गई क्योंकि आपकी जो फरमाइश है सर आंखों पर, और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि हमारी जो इबारत है उससे भी काफ़ी मॉडिफिकेशन करके या उससे इंस्पायर होके बहुत सारे इबारत

लिखी गई है, कविता लिखी गई है, कुछ पंक्तियां लिखी गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। हमारे श्रोतागण एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और साथ ही बोलते हैं कि सुरीला सफर कारवां के हम सफर साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। साथ ही इन्होंने लिखा है कि प्रेम प्रसंगों की श्रृंखला के इबारतों में आज भी दिल के किसी कोने में छुपी शून्यता को प्रेम की मीठी एहसासों से पूर्ण करने की खूबसूरत कोशिश की गई है। सच है, उम्र की सीमा बंधन को दरकिनार कर दिल जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अनायास ही मोहब्बत की दस्तक दे जाता है। कितनी खूबसूरत बात कही है। हमारे एक और श्रोता है, वो लिख रहे हैं, मुस्कुरा उठे हैं और कह रहे हैं कि हम तो उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां अजनबी हसीना तो क्या, अपनी हसीना भी भाव नहीं देती। अगर चाय मांगो तो जवाब नहीं मिलता, खुद से बना लो। ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी नोक झोंक भी तो जिंदगी में रंग भरती है। ये भी अलग तरह का रंग है, बिल्कुल। साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो वीरान राहों को गुलजार बना देता है वो है मोहब्बत का रंग, और साधारण दिनों को खास बना देता है वो है मोहब्बत का रंग। जब प्रेम दिल में घर कर लेता है तो खतों के पन्नों पर शब्द नहीं भावनाएं उतरती है। यादों के रंग इतने गहरे होते हैं कि हर पन्ना एक नई तस्वीर बन जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक प्रेमी जब प्रेमिका से मिलता है तो एक इत्तेफाक ही होता है, क्योंकि नजर में तो बहुत आते हैं, अब जो नजरों को भा जाए बस मोहब्बत वहीं पर कबूल कर ली जाती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मोहब्बत ना हो तो फिर जिंदगी के रंग फीके लगने लगते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आप तो हमसे सवाल काफी पूछती हैं, हालांकि हमने अभी सवाल पूछना शुरू नहीं किया आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज की इबारत में सबसे अच्छा शब्द हमें क्या लगता है, तो वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल ये गीत

फिल्म कन्यादान से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और नीरज ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। साथ ही खतों की बात हुई, पत्रों की बात हुई इस गीत में, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने पत्र लिखने की जो आदत है उसे रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल हो गया है हर तरफ, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पुराने ज़माने की खुशबू, वो खत लिखना, वो पत्र भेजना, क्या अभी तक भी ऐसा होता है? तो चलिए आप मुझे बताइए कि पिछली बार आपने खत, पत्र या एक प्यारा सा जन्मदिन पर या किसी ऐसे मौके पर किसी को प्यारा से अपने हाथ से लिखा खत, कुछ पंक्तियां कब लिखी? मोबाइल पर नहीं, एसएमएस पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, लेकिन आपने एक डायरी पर किसी को लिखकर कब पत्र दिया और क्या लिखा? वो लिखना अपने आप के लिए भी हो सकता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम वो भावना है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति या ईश्वर के प्रति स्नेह, समर्पण, विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ अपनापन होता है। प्रेम में स्वार्थ कम और दूसरे के सुख की चिंता अधिक होती है। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे 12 गीतों की लिखी हुई इबारत में तीसरे नंबर का लिखा हुआ गीत अभी अभी हमने शामिल किया कन्यादान फिल्म से। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देखते हैं कि कौन सी लिस्ट जो है हमारी पूरी होती है गीतों की, उन्होंने एक लिस्ट बना ली, तो वो तो ज़रूर देखते हैं कि मेल खाती है कि नहीं खाती, लेकिन साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि आपने पिछली बार किसे प्यार भरी पाती लिखी है। साथ ही साथ ये जो अगला गीत अभी आप सुनेंगे, उस गीत को कौन से फिल्म से लिया गया है और उसमें कौन अभिनेता और अभिनेत्री है जिस पर ये गीत फिल्माया गया है, मुझे जल्दी से लिख भेजिए। मैं इंतजार कर रही हूँ आपका मैसेजेस पर।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे और बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत सारे श्रोताओं ने कि स्वयंवर फिल्म से इस गीत को लिया गया है और शशि कपूर मौसमी चैटर्जी पर फिल्माया ये गीत बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे सही जवाब मिले हमें इसके लिए। साथ ही साथ खतों की बात जहाँ चल रही है वहाँ पर भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले हैं। पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय पर पत्र पर नहीं लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो खत के रूप में ही उसे लिख देती हूँ, वो भी पढ़कर समझकर वैसे ही लिख देते हैं, फुर्सत नहीं है बात करने की तो मुझे यही अच्छा लगता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हमारी सगाई से पहले और सगाई के बाद के यादगार पलों पर बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि सगाई से पहले मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे लिए अजनबी हसीना ही तो थी जो वास्तव में मेरे दिल के वीरान राहों पर सपनों की रानी बनकर खिल जाती है। अरे वाह, आपने हमारी इबारत का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को चुनकर बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि डिजिटल दौर में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं वहां खत लिखने का सुख कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन आज जब मैंने विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम के लिए अपने हाथों से एक खत लिखा तो लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कागज पर उतरते शब्दों के साथ पुरानी यादें भी लौट आई, वो डाकिये का इंतजार, लिफाफे की खुशबू और अपनेपन से भरे अक्षर। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ इस तरह रही कि कभी प्यार में खत लिखने और पैगाम भेजने का समय नहीं मिला। शादी हो गई, श्रीमती जी बन गई और अब उस मुकाम पर है उम्र के कि इसकी नौबत ही नहीं आ रही है। क्या जमाना था, खत के इंतजार में दिन गंवाते थे और आज कुछ सेकेंड में खत मोबाइल पर आ जाता है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में सबसे खूबसूरत शब्द उन्हें खुशबू लगता है, ये पहले प्यार की खुशबू। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हमारी वाली हसीना तो कहती है चाय बना रहे हो तो हमें भी पिला देना। क्या बात है, क्या बात है, ये प्यार।

मिठास नोक झोंक, यही तो जिंदगी का फलसफा है और यही जिंदगी में रंग भरता है। चलिए हमारे गीतों की लिस्ट पर पहुंचते हैं। जो अगला गीत अभी आपको सुनवाने जा रही हूं वो है कभी कभी फिल्म से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब सवाल ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोफेशन क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये आपको हमें बताना है। इस फिल्म में जो कैरेक्टर, जो किरदार वो निभा रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो हमें बताइए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर। और इस संदेश से पहले जो गीत अभी आपने सुना वो कभी कभी फिल्म से था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत था। और इसके बारे में हमने एक सवाल आपसे पूछा था, सवाल याद है ना? सवाल ये था कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो इस फिल्म में जिस किरदार में हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। तो हम तक कुछ मैसेजेस पहुंचे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कवि शायर का काम करते हैं, वो शायर हैं, लिखते हैं, लेखक हैं। और साथ ही एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि प्रोफेशन तो याद नहीं है लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है तो सुनने में ध्यान है। एक और श्रोता हमारे जवाब देते हैं इस सवाल का कि अमिताभ बच्चन कवि थे और शशि कपूर एक अमीर व्यापारी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन एक शायर होते हैं जो शायरी कविताएं लिखते हैं, बाद में वो दूसरे कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और ऋषि कपूर साहब बाद में उन्हीं के कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं, क्या ये सही है? थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन आधा कह सकते हैं कतरा कतरा सही है और कतरा कतरा पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस बारे में और आपके संदेशों का इंतजार रहेगा कि दरअसल उन दोनों का प्रोफेशन इस फिल्म में क्या है, मुझे लिख भेजिए। साथ ही एक और श्रोता है जो हमें लिखते हैं कि खत लिखना जिसमें वो जज्बात, वो प्यार इजहार आजकल के फोन या सामने कहे जाने से नहीं आते हैं, एक एक शब्द पढ़ने से जो सिहरन, जो रोमांच होता है वो कहीं भी नहीं मिलता। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो जिन गीतों को नहीं सोचा था वो अगर बजने लग जाएं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही बात। तो आप मुझे लिख भेजिए कभी कभी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के किरदारों का क्या प्रोफेशन है, क्या काम वो करते हैं उस फिल्म में। और साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत यादों की बारात से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी। तो व्यवसाय पर, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के व्यवसाय पर बहुत सारी बातें आई हैं यहाँ पर, बहुत सारे संदेश आए हैं कि उनका क्या प्रोफेशन था, वो क्या काम करते थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मैं अमिताभ व्यवसायी हैं और शशि कपूर सिविल इंजीनियर। एक और श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन उसमें शायर और लेखक बने हैं और शशि कपूर आर्किटेक्ट बने हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन एक कवि के रूप में होते हैं, बाद में वो अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं, कोयले की खदान का काम संभालते हैं और वहीं शशि कपूर इंजीनियर या आर्किटेक्ट होते हैं। अभी भी पूरा जवाब नहीं मिल पाया है। मेरे ख्याल से और मैसेजेस आने देते हैं इस बारे में, क्योंकि ये बड़ा रोचक होता जा रहा है। जी हाँ, पहले वो शायर होते हैं लेकिन बाद में अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं और सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो शशि कपूर होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि वो नक्शे बना

करते हैं मकानों के, ताकि वो घर बन सके। और अमिताभ बच्चन सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, जहां पर वो कोशिश करते हैं कि उन नक्शों के अनुसार बिल्डिंग, घर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाए। ऐसा ही कुछ। पत्रों की बात चली थी तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब वे पाठशाला में पढ़ते थे तब खत लिखने का बड़ा शौक था, सभी रिश्तेदारों को खूबसूरत खत लिखा करते थे। बाद में उन्होंने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए वो, और वहाँ उनकी एक टीचर से दोस्ती हो गई, और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा ये मैसेज है, वहाँ पर भी वो खूबसूरत खत लिखते थे। तो ये जो खत लिखने का सिलसिला है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रेरणादायक बातें भी लिखते थे, तो ऐसा उनका खतों का सिलसिला चलता रहा। उनके खत आज भी इनके लिए यादगार विरासत की तरह है।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत बसेरा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे हैं पर अब नहीं लिखते, और काफी दिनों के बाद अभी 15 दिन पहले ही मनचाहे गीत के लिए विविध भारती में पत्र लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत बसेरा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे हैं पर अब नहीं लिखते, और काफी दिनों के बाद अभी 15 दिन पहले ही मनचाहे गीत के लिए विविध भारती में पत्र लिखा, अभी तक शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल शामिल होगा, आप बस खत लिखते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं उस गीत के बारे में, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गीत के स्टार्टिंग में कांच के ग्लास पे जो संगीत इजाद किया गया है आरडी बर्मन द्वारा, वो काबिले तारीफ है, और वो भी अक्सर किचन में कांच के बर्तनों पर ऐसी किसी धुन की तलाश में रहते हैं और बहुत मजा आता है। ये गीत उन्होंने जहन में सोचा था, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी हाँ, यादों की बारात जिस सिनेमा हॉल में देखी थी वो सिनेमा हॉल टूटकर मॉल में परिवर्तित हो गया है, और अब तो वक्त अलग है, लेकिन उस वक्त 160 रुपये में फिल्म देखी थी यार, 160 रुपए का टिकट आया था, इतने सस्ते में उन्होंने ये फिल्म देखी थी। जी हाँ, वक्त बदलता है बहुत कुछ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें कॉल किया है ऑफिस में और कहा है कि ये आप जो मैसेजेस लिख रहे हैं, संदेश लिख रहे हैं, वो मुझ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, फैमिली मेंबर्स की तरह बन गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब परिवार के सभी सदस्य इस प्रोग्राम को, विविध भारती को सुनते हैं। जी हाँ, फिलहाल आते हमारे अगले सवाल पर। गीत तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अभी जो गीत आपने सुना बसेरा फिल्म से, जहां पर सवेरा हो बसेरा वहीं है। बसेरा मतलब घर, लेकिन इसका अगर दूसरा मतलब देखा जाए तो जहां आपको सुकून मिलता है, जहां आपका दिल आनंदित हो जाता है और मन बसता हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका मन बसता है? जरूरी नहीं कि वो घर ही हो सकता है, कोई जगह, कोई ऐसी जगह जहां आप जाकर एकदम आनंदित हो जाते हो, या आपको वो सुकून मिलता हो, या कोई ऐसी जगह जहां आप घूम कर आए हो, या कोई पुरानी याद, जहां पर भी आपको लगता है कि वो आपका बसेरा है, मुझे लिख भेजिए। इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल ये अगला गीत, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।

मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में दो रास्ते फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत लिखने का वो जमाना बड़ा ही खूबसूरत था। किसी के खत का इंतजार ऐसा होता था जैसे कि किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करता हो। वो मनचाहा खत मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, मानो हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। काश वो खत लिखने का जमाना दोबारा लौट आए। फिलहाल आप अपने लिए खत लिख सकते हैं, अपने जो करीबी हैं उनके लिए लिख सकते हैं, और विविध भारती तो है ही आपके खतों के इंतजार में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी खत कब लिखा ये याद नहीं, लेकिन बहुत सालों पहले पिताजी को खत लिखा था और अभी तक संभाल के रखा है, और पत्नी को लिखे सारे पत्र भी पिछले कई कई सालों से उन्होंने सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जब भी वो कोरे कागज पर स्याही बिखेरती हैं तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ठहराव महसूस होता है। खत लिखते समय भागती हुई दुनिया जैसे रुक जाती है। हर एक शब्द को चुनना और उसे कागज पर उतारना एक ध्यान की तरह महसूस होता है। अपनी उंगलियों से पेन को पकड़कर कागज पर दबाना अंदर के उमड़ते हुए जज्बात को एक आकार देता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि 11-12 गीतों की लिखी हुई इबारत में से पांचवें नंबर पर ये जो गीत है रेशमी जुल्फें, ये शामिल हुआ है, इन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि लाखों पुराने रखे हुए खतों की दराज जब भी खुलती है तो उनकी पीली पड़ चुकी रंगत और खुशबू पुराने दौर में ले जाती है। उन्हें दोबारा पढ़ना बीते वक्त के किसी अजीज शख्स को दोबारा से गले मिलने जैसा लगता है, किसी खास व्यक्ति के गले मिलने जैसा लगता है उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान पशु पक्षी के रात्रि को आराम के रहने के स्थान को बसेरा कहते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल की झील के किनारे बसेरा है उनका, जहां उनकी सारी यादें ताजा होती है और उन्हें भोपाल सिटी से बहुत प्रेम है।

येसुदास को आप सुन रहे थे। इस गीत में छोटी सी बात फिल्म का नाम है और साथ ही दिया था आशा भोसले ने इस गीत में। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारा बसेरा बताया है कि जहां जहां उन्हें अच्छा लगता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जहां पूरे परिवार को एक साथ एक दिल से आत्मिक संतोष और शांति मिलती है वहीं पर बसेरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि खत के नाम पर बहुत से वाक्य याद आ रहे हैं पर क्या लिखें और क्या ना लिखें। जी हाँ, फिलहाल इजाजत चाहेंगे आपसे इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा, जिसने आज इस सफर में आपका साथ दिया। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप बने रहें विविध भारती के संग।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड स्थित पहनिया पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लिया। उन्होंने मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते एक महीने में सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में से 90% निष्पादित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जनता से संवाद और जनता की समस्या का हल करना। इधर मुख्यमंत्री का अगला कार्यक्रम सिवान जिले में निर्धारित है। वहां वे पचरुखी प्रखंड के पपौर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल होंगे तथा 415 करोड़ रुपए से अधिक की 44 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर आज से प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 18 जून तक चलने वाले इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, ईकेवाईसी तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि शिविरों में हेल्प डेस्क, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की सहायता और स्वास्थ्य जांच शिविर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन और सेवाएं आसानी से मिल सके। पूर्व मध्य रेल 17 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र और पटना जंक्शन सहित विभिन्न स्टेशनों से 14 विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। एडीजी रेल डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने बताया कि परीक्षा में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है, जिसे देखते हुए आज और कल विभिन्न रूटों पर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पाटलिपुत्र जंक्शन और पटना जंक्शन से अररिया, नवगछिया, भभुआ रोड, गया, बक्सर, राजगीर और झाझा सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। श्री मोहन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनकी टीम सर्वरों पर लोड की लगातार निगरानी कर रही है। एजेंसी ने यह भी आश्वासन दिया है कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले समय पर प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीमित और निश्चित अवधि के लिए टेलीग्राम एक्सेस पर रोक लगाने के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्णय का स्वागत किया है। एनटीए ने कहा है कि यह प्रतिबंध पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान

0: औरंगाबाद, अरवल और रोहतास जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज कैमूर ज़िला के भगवानपुर ब्लॉक वाक़े पहनिया पंचायत में मुनक़दा सहयोग शिविर में शिरकत की। उन्होंने मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करके रियासत की खुशहाली के लिए दुआएं कीं। वज़ीर आला ने जनसंवाद प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता एक माह में सहयोग शिविर के तवस्सुत से मौसूला दरख्वास्तों में से 90% हल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का खास मकसद है आवाम से बात और अवामी मसाइल को हल करना। इधर वज़ीर आला का आइंदा प्रोग्राम सीवान ज़िला में तय है। वहाँ वो पचरुखी ब्लॉक के पपौर पंचायत में मुनक़द सहयोग शिविर में शामिल होंगे और 415 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 44 तरक्याती मंसूबों का इजरा और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला की आमद को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में खिदमात, सुशासन और गरीब फलाह के 12 साल मुकम्मल होने पर आज से रियासत के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक सहयोग सह जन कल्याण शिविर मुनक़द किए जा रहे हैं। 18 जून तक चलने वाले इन कैंपों में मरकज़ी और रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबों से मुतालिक दरख्वास्त, रजिस्ट्रेशन, EKYC और फ़ायदा पहुँचाने की सहूलत एक ही मुकाम पर दस्तयाब कराई जा रही है। मुख्तलिफ अजला से हमारे नुमाइंदों ने बताया कि कैंपों में हेल्प डेस्क, ट्रेंड स्वयं सेवकों की मदद और सेहत जांच कैंप का भी नज्म किया गया है, जिससे लोगों को ज़रूरी रहनुमाई और खिदमात आसानी से मिल सकें। ईस्ट सेंट्रल रेलवे 17 जून को होने वाले एक्साइज कांस्टेबल दाखिला इम्तहान के पेश नज़र पाटलिपुत्रा और पटना जंक्शन समेत मुख्तलिफ स्टेशनों से 14 खसूसी ट्रेनें चलाएगा। ADG रेल डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने बताया कि इम्तहान में तकरीबन 5.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने का इम्कान है, जिसे देखते हुए आज और कल मुख्तलिफ रूटों पर खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। पाटलिपुत्रा जंक्शन और पटना जंक्शन से अररिया, नौगछिया, भभुआ रोड, गया, बक्सर, राजगीर और झाझा समेत मुख्तलिफ स्टेशनों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने नीट UG री एग्ज़ाम से कबल तहफ़ और तैयारियों के जायज़ा के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। उन्होंने तलबा की सहूलत, हिफाजती इंतजाम और इम्तहान के अमल की शफाफियत पर ख़ास ध्यान देते हुए इस री एग्ज़ाम के लिए रियासती हुकूमतों की तैयारियों का जायज़ा लिया। दाखिला सेक्रेटरी ने सभी रियासती हुकूमतों, यूनियन टेरिटरीज और मरकजी एजेंसियों को हिफाजती प्रोटोकॉल की तामील करने की हिदायत दी है। जनाब मोहन ने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज रियासतों से तलबा के सफ़र को आसान बनाने की अपील की है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने बताया है कि आइंदा नीट UG री एग्ज़ाम 2026 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सहूलत शुरू होने के 24 घंटों के अंदर ही 10 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों की आसानी के लिए उनकी टीम सर्वरों पर लोड की लगातार निगरानी कर रही है। एजेंसी ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि सभी उम्मीदवारों को इम्तहान से कबल वक्त पर एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। 21 जून को मुकर्रा नेशनल इंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट UG 2026 के री एग्ज़ाम को देखते हुए हुकूमत ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन पैगाम भेजने पर रोक लगा दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने महदूद और मुकर्रा मुद्दत के लिए टेलीग्राम एक्सेस पर रोक लगाने के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के फैसले का इस्तकबाल किया है। NTA ने कहा कि ये पाबंदी री एग्ज़ाम के दिन और उसके फौरन बाद तक नाफिज रहेगी। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए पैगाम को नशर करने की सहूलत को भी बंद करने की हिदायत दी गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान औरंगाबाद, अरवल और रोहतास अजला के कुछ हिस्सों

में गरज, चमक और बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश का इम्कान जाहिर ही किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए या ओ लेवल सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित आप विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देख सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियम के हिसाब से आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 जून 2026। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इनकी शैक्षणिक योग्यता, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देख सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के हिसाब से आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप www.ssc.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के कुल 4500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। शैक्षणिक योग्यता, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप विज्ञापन देख सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के हिसाब से आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22 जून 2026। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप www.centralbank.bank.in से प्राप्त कर सकते हैं। कृपया एक बार फिर से सुने। इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। शैक्षणिक योग्यता, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए या लेवल ओ लेवल सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप विज्ञापन देख सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ रोजगार सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज।

0: अब आप दोपहर समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
2: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
2: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है।

0: AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत
2: व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
4: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
2: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है।

0: पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा और भारत ने महिला FIH नेशंस

0: कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

तेरे घर के सामने, यह था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और एसटी बर्मन की तर्ज थी।

0: ओबी नैयर का संगीत।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जंगली, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, आपको सुनवा रहे हैं गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम है, हसरत जयपुरी ने से लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
1: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं
2: जी,
1: उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होती देर भी नहीं लगती।
2: बिल्कुल
1: है।
2: बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही है, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
1: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
2: और कोशिश करिए
1: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
2: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए, एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना खराब हो।
1: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारा ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
2: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती है। और जितना हम किताबों से जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज्यादा इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहां बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
1: खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़ें, कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़ें, जीवनी पढ़ें,
2: पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें, देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं।
2: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये, आप अगर देखिए मन के जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
1: सबसे बड़ी बात है हमारा मन कितना सशक्त है। अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन को सशक्त बनाते हैं, हमारे श्रोता बता सकते हैं हमारी
2: किस तरह से, अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं, या फिर हिचकिचा जाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है आपके घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती है कि अरे भाई आज तो पतिदेव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया, तो आप अपने मन को कितना मजबूत बना

0: आती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
1: बिल्कुल, और आज हम मुहावरों के दिनों में बात करेंगे दूर के ढोल सुहावने।
0: हाँ हाँ, ये तो होता है,
1: अक्सर होता है ना हम लोगों की, दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
0: बिल्कुल, उसकी जिंदगी में क्या क्या घटा, कैसे घटा, उसने कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब बातों को नहीं जानते हम, केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
1: जी, तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे।
0: ये भी बताएं कि इनकी जिंदगी में दूर के ढोल
1: किस तरीके से इसको समझते हैं, अपना नजरिया बताएं, और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत। आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात करेंगे।
0: क्या बात है,
1: जो है डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है,
1: जबकि विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है।
0: आपने कंट्रास्ट कर दिया है, बातें हल्की फुल्की कही
1: है, अक्सर
0: विषय रखा है
1: हो जाती है
0: घरेलू बजट, बाप रे,
1: जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है पूरे घर में, मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता इस विषय पे।
0: बिल्कुल सही कहा, इसके लिए जो पता है जो गृहिणियां है ना वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है।
1: बिल्कुल, और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे।
0: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखे, और अभी हम सुन लेते हैं गीत।
1: जी

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी।
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है, तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल। ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज ही के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी एफएडी ने IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो अपने परिवारों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना।
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी

0: आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेषण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
1: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी कितनी खुशी
0: होती कि ना कि अब चलो ये जरूरतें हमारी,
1: हाँ, पूरी कर लेंगे, है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
1: बिल्कुल,
0: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है।
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना है,
1: इस पसीने से भी बचा के रखना है अपने को।
0: तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे आने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानिता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और यह दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग।
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल।
0: कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना।
1: और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने के बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती है, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, आपको जरूरी नहीं है आपको पता हो उसकी।
0: आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां है, वो हम नहीं जान पाते हैं।
1: बिल्कुल। इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे, लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौवा।
0: बिल्कुल।
1: वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता।
0: हाँ।
1: वो अपनी उड़ान को ऊपर ऊंचा कर देता है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है
0: कि
1: वो कौवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
0: वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ा,
1: नहीं हटा किसी को देख के, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले, है ना, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं, आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
1: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए।
0: हाँ, ये होना चाहिए और होता भी है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना आरती। तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती है, और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
1: बिल्कुल। और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने

0: और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र खोल दिया और आपने एकदम
1: से हो गया, आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
0: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
0: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है। क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
1: तो उसका फायदा उठाया जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को, इसीलिए कहते हैं।
0: तो इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी की कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहें।
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश मत करें,
1: अपनी सफाई देना।
0: हाँ, कोई जरूरी उसको वही सफाई ज्यादा अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
1: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हाँ, वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है,
1: शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता है। जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पड़ा है इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सही होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
1: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
0: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
1: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
0: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी
1: परेशानी खड़ी हो जाती है, फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती,
0: अंतराल का समय हो गया है,
1: एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
0: जी,

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं। तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
0: बिल्कुल सही कहा
1: आपने। क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए, तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं,
1: आपने इंतजार किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया, है ना।
1: एक थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज के सामने,
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के पास मत जाइए,
1: है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना। कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जाकर पूछते हैं, है ना,
1: हम सही हैं, हम सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप
0: सही हैं,
1: बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने आपसे निर्णय लीजिए।
0: आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना, कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा हम भावुकता में बह जाते हैं, तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
1: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं
0: तब उनके होते हैं,
1: तब उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं,
0: ये आपको, हाँ ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना, आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए।
1: और इसके लिए जरूरी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: और बात में हमें उसका पछतावा भी होता है।
0: हाँ।
1: लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो इस बात का हमें ध्यान रखे बोलना
0: समझ
1: चाहिए,
0: के बोले, तोल मोल के बोले। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझ कर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे।
1: बिल्कुल।
0: और हम सब की आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है।
1: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और उस किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।

0: क्योंकि
1: मैं
0: ये चाटुकारिता में आता है,
1: ये चाटुकारिता में आता है। और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
0: और अपनी खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है,
1: बिल्कुल होती है। और मजबूत मन ही वो जादू है जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है। इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
0: बिल्कुल, और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहे कि वो आपकी तारीफ करेंगे।
1: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ करने वाली है, पर आरती
0: मैं तारीफ करती हूँ लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को। मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ वो करती हूँ।
1: तो मैं आगे उम्मीद रखती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद रखिए अच्छे से तारीफ।
1: तो चलिए, आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक गीत सुनवा दें।
0: जी

0: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
1: अरे वाह, बिल्कुल
0: जी। तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील

0: व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी है।
1: हाँ बिल्कुल, और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है।
0: जी, और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
1: बिल्कुल, और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है।
0: जी, और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, पीपीसी सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं कि कितना सुंदर दिख रहा है, वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
1: क्या बात है।
0: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
1: और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की, और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
0: बिल्कुल, और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
1: हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है, और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
0: बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है, और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
1: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: और बहुत ही अच्छी बात है ये। और महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी नई पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
1: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के, लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें हम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
1: अच्छा, आपको गीत की तलब हो ही गई है। चाय की तरह
0: जी।
2: जरा नजरों से कह दो जी।

कितने मासूम लग रही हो तुम, तुमको जालिम कहे वो झूठा है ये भोला पर।

0: तो धूल के ढोल सुहावने। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देख के, तो देखने में तो इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं, और जब वो आती है हमारे पास तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय
0: जी
1: बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
0: बिल्कुल। और फिर वापस करो, ये करो, गुस्सा
1: वो
0: आता है
1: सारी
0: ना उस
1: प्रक्रिया ही
0: समय,
1: शुरू हो जाती है।
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस सच में।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है, वो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है, वो पास जाकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण,
0: जी
1: जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है। और एक और मेरे जो श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही ऊबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने कैसा अजीब अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
1: बहुत
0: चमकता है।
1: सुंदर लगता है। हम उसकी तुलना करते हैं हर एक चेहरे से, चांद की तरह सुंदर
0: बिल्कुल,
1: चेहरा है ना, चांद जैसा
0: लेकिन
1: हमारा टुकड़ा
0: जी,
1: है
0: लेकिन
1: ना,
0: जब से वहां पर पहुंचे तब से थोड़ा
1: पता चलता है कि
0: सा
1: भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है।
0: जी।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं, वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
0: बिल्कुल। तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलिया रलिया मना।
1: रलियामणा
0: जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत, और रलियामणा मतलब सुहाना,
1: सुहाना।
0: यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने
1: कहा
0: जो
1: कि पहाड़ों को दूर से जब
0: हाँ
1: हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते
0: जी
1: हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कान फोड़ लगने लगती है। अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
0: बिल्कुल
1: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, ये हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर
0: जी
1: जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
0: वैसे ही
1: अच्छे
0: सही
1: हैं।
0: है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती है, जैसे हमारे श्रोता जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो, जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस किस तरह से कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए। लेकिन तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने इस
1: बिल्कुल,
0: चीज को
1: लेकिन
0: समझा।
1: यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी
0: अच्छी
1: ही
0: लगेंगी। ऐसा नहीं है
1: लगेंगी।
0: कि आपको निराशा हाथ लगी है कुछ,
1: हाँ,
0: आप
1: इस
0: बिल्कुल
1: बात
0: हमसे
1: का
0: मिलिए तो हम आपको
1: वैसे
0: और
1: ही
0: बहुत अच्छी
1: लगेंगे
0: तरह से आपसे बात
1: जैसे
0: करेंगे।
1: हम अभी आपको लग रहे हैं।
0: जी
1: ठीक
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में, खास करके पति पत्नी में, इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियों बेटियाँ और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा, ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और फिर पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता, तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बचत की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें, तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता, तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
0: देखिए, आपका एक श्रोता का, हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया।
1: हाँ।
0: उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया, उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना, वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है, जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना, तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, और सबको लगता है हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: बिल्कुल,
0: वो हमसे
1: बिल्कुल, हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार। सेल्युलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्युलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विथ। गाइड में पहले पहले शुरू शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे मगर उस चीज़ को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कहा अरे मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो ज़रूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, तो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट करते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे।
2: जरूर।

0: वहीदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई, तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है, यहाँ तो ये रूपा जी जो है अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से है। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालते हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हो, तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे।
0: दिल दिया दर लिया,
1: उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूँ होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना है, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ जैसे उनके, तो जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है, मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफ़ी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाला। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज़। मैंने कहा कब? तो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी अपना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
0: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए
1: आदमी का? हाँ, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है
0: आज पुरानी राहों से।

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मैं मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वॉज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छे थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में

0: भी आप देखती होंगी जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है
1: नहीं
0: आपको?
1: देखिए, लेटली 1-2 साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है जो हर किस्म की फिल्म बन रही है. मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है. मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज़्यादा ही वायलेंट पे बेस्ड होती थी और कहानियाँ रटी पटी एक ही के दो भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में. वो माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है. यू नो इट वॉज वेरी बोरिंग. अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स. और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं जो हमारे ज़माने में नहीं होते
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है,
1: थे.
0: क्या नाम है उनके?
1: वेल, वो सब बड़े शर्माते हैं कि कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की है बस.
0: वो फिल्में देख रहे हैं आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने. मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया
0: अच्छे।
1: टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म फिल्म स्टडीज की. तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में. मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना. तो बोले टोरंटो में देखी. ओ मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा. तो बोले नहीं कॉलेज में देखी. मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई. तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है. मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की 1-2 फिल्में हैं. तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है. तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है. अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं.
0: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है और साहब बीवी गुलाम का भी आया है। साहब बीवी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
1: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला.
0: हेमंत कुमार साहब की
1: हाँ
0: आवाज
1: हेमंत
0: में।
1: कुमार साहब की आवाज, वो बहुत अच्छा था.

अभिनय जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई।

0: श्यामे भी वो
1: बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम,
0: कलेक्ट
1: रामो श्याम, दिल दिया
0: जे,
1: दलिया, आदमी, तो ये बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो यूज टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ. और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया. वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी. मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने. वैसे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे. इट वॉज अच्छा लगता था
0: लेकिन
1: उनके
0: उन्होंने
1: साथ.
0: कामयाबी का फल अच्छा चखा,
1: बिल्कुल, या
0: खूब चखा
1: वो चखा.
0: उन्होंने. आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं. उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम. शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे,
1: हाँ जी,
0: जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी. राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे, और मेरे ख्याल से बासु भट्टाचार्य साहब ने
1: भट्टाचार्य.
0: उसको डायरेक्ट किया था. उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में. एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को.
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी. उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे, मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी. और आप मानोगे नहीं, आधी से ज्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं, तो मैं नहीं हूं या नहीं तो राजी नहीं है. तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे
0: अच्छा.
1: सेट्स पे, और वो बहुत मसरूफ थे. अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी. उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे. बड़ी मुश्किल होती थी, मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था, ये कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं, और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था. तो वही वैसे हालात में फिल्म बनी, और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राजी. और वाकई में मैंने देखा, राजी यूज टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू, यू नो, बहुत. और जो जो रशियन था वो, उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने, आवारा के सब गाया थे, गाते थे.
0: वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था, और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था. इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके, तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट. उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है.
0: कुछ चीजें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी हो, कुछ
1: बिल्कुल
0: उसी तरह की वो
1: सही
0: फिल्म है.
1: सही.
0: उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे. एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनाए.
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है.

0: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
1: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजी ने कहा, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कुछ गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा, मैं मानती हूँ मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले, कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा, आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत, तो गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई।
0: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किसी फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो?
1: अभिजान।
0: अभिजान बंगला आपको आती?
1: नहीं, उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
0: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे?
1: हाँ, पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
0: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
1: हाँ, उन्होंने कहा, जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है, जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सबने कोरस में कहा है वहीदा रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त जाया होता था ना नेगेटिव जाया। वो तो कहते थे, भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है, इससे कोई चूड़ियां प्लास्टिक की चूड़ियां भी नहीं बन सकती है, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूं कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
0: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के, जब उनका ऑफर आया पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
1: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा, देखिए हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे, मगर कई दफा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने

0: नहीं पैसे लिए रेशमा शर्मा में, और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के या बहुत कम पैसे, जो डायरेक्टर के मन में आए दो दे दे तो दे दे, नहीं तो नहीं।
1: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जे रकम।
0: हाँ वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट आग हो गया था तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मजा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
1: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
0: नहीं, आई एग्री विथ हिम, वो आई एग्री विथ हिम इज अ बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर।
1: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
0: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम, तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे ना वैन्स होते थे, तो हम ज्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो, तो सब एक्टर्स हम साथ में पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियां अपने सीन सुना करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा वही जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को।

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया हो और आपको मजा आया हुआ वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो?
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा, ये क्या फ़र्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अल्लाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ, तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं? तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, वो उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक़ है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा, नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा, चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं। कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो ब्रेक हुआ तो मैंने कहा, लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोरदा भी मान गए हैं तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा, ये क्या बात है? ये नहीं, क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुलीन ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा, लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा, एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगी, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं? वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ, मैंने सोचा गलत कहा कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले, अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है। तो फिर वो आई। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: उनका हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से, तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है, अंदर की जो पीड़ा है, वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो।
1: हाँ।
0: ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से, अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल, इट वॉज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे, क्योंकि वो महसूस कर रही, ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरे स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूं भूल जाता हूं, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यों मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई।
0: वही गाना सुनते हैं?
1: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है।

0: कुछ अजीब।
1: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई?
0: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं। तो 20 साल बाद नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म खत्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर की सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना उन्होंने, मुझे नमस्कार किया। और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे। तो उनकी बीबी उनसे बहुत नाराज हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने मत नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंदा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहाँ थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहाँ नहीं थी, वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए। तो नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो एक दो महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई तो मुझे पूछने गया, वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में? हाँ, मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने फिल्म देखी? तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। ओ रियली? मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मजे की तो बात यह है, मैंने कहा

0: कहने, क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम वो नीचे थे, मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था। तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप वहाँ मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं का। तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
1: वेदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें, या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा। किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे आप?
0: कोहरा का गाना, झूम झूम ढलती रात।

0: वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और खास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघरों जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपने सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, म्यूनिसिपल स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं, तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूंकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते, कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ है। इसका नाम है प्रथम, प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील, तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आ गए पढ़ाने के लिए, हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं, टीचर्स उनको कहानियों से, गानों से उनका

0: दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की जिंदगी बड़ी इंप्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी जरूर पढ़ें, कि इसका फायदा क्या है।
1: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
0: हाँ जी।
1: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से, विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

0: 810 किलोहर्ट्ज पर 5 बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियन शहर पहुंच गए हैं। एवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले श्री मोदी एवियन जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन ने उनका स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना विषय पर एक उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश

0: पत्र डाउनलोड किया है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सीरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सीरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंकों के ऋणों की कथित धोखाधड़ी पूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह तलाशी अभियान कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े धन शोधन मामले में सबूत जुटाने के लिए चलाया जा रहा है। जांच संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सर्कुलर लेन देन, नीलाम की गई संपत्तियों का कम मूल्यांकन, बढ़ा चढ़ाकर या धोखाधड़ी से किए गए दावे और कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में लेनदारों के मतदान अधिकारियों और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के संबंध में है। हिमाचल प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए जमीनी अभियान आज से प्रारंभ हो गया। राज्य में जनगणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि केरल और नागालैंड में स्वगणना सुविधा प्रारंभ हो चुकी है और ये इस महीने की 30 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। श्रोताओं, सबसे पहले डालते हैं एक नज़र इससे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में यानी कि 5:10 पर आप सुनेंगे बेहतरीन भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। शाम 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

पर हम प्रस्तुत करेंगे किसान साथियों का कार्यक्रम किसानवाणी। प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आज के किसान के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता। विषय है बरसाती सब्जियों के पौधे कैसे लगाएं। इसमें आप सुनेंगे विजय बहादुर सिंह से डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी की बातचीत। नया दौर नई बातें में हम आपको जानकारी देंगे वानिकी की पौधशाला कैसे करें तैयार।

शाम 6:40 पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे। भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। सांझ गीते 7:15 पर हम पेश करेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से। शाम 7:25 पर हमारे श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद।

शाम 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9 बजे हम प्रस्तुत करेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। बेहतरीन गजलों का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा महफिल। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी।

अभी हम एक नज़र डाल रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। भक्ति गीतों के कार्यक्रम वंदन में आइए लेते हैं आनंद। कुछ बेहतरीन भक्ति गीतों का पहला भक्ति गीत रंजन दुबे की आवाज़ में, एल्बम का नाम है दीवाना श्री राम का। शब्द हैं अनुज तिवारी के और संगीत दिया है असलम मिर्जापुरी ने।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन का अगला भक्ति गीत अरविंद सिंह और सौम्या वर्मा की आवाजों में।

तो श्रोताओं, बृजराज सिंह लखा द्वारा गाए इसी बेहतरीन भक्ति गीत के साथ है भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी सुखी व सानंद होंगे। सभी साथियों को मेरा यानी कि रवि भूषण का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, आज 16 जून है और आज के दिन हर साल विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस यानी IDFR मनाया जाता है। हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस जानकारी से। यह दिन उन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिकों के बलिदान और योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो अपने गृह देश में रहने वाले लगभग

0: आगे 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए धन भेजते हैं। परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने और अपने बच्चों के लिए आशापूर्ण भविष्य का निर्माण करने में योगदान दिया है। इस दिवस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य लाखों परिवारों, समुदायों, देशों और संपूर्ण क्षेत्रों पर इन योगदानों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस से सरकारों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं और नागरिक समाज से भी आह्वान करता है कि वे व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयासों के माध्यम से प्रेषण के प्रभाव को अधिकतम करने के तरीके खोजें। अधिकांश प्रवासी अपने परिवार को सहारा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निचले स्तर पर कठिन और अक्सर खतरनाक नौकरियों में काम करते हैं। उनके अपने लक्ष्य होते हैं, गरीबी कम करना, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, बेहतर आवास और स्वच्छता। उनका मानना है कि गरीबी को दूर करने के लिए यह काम करना बहुत ज़रूरी है। यह जब काम करेंगे और काम करने के बाद जो पैसे कमाएंगे, उन पैसों को यह अपने घर परिवार के लोगों के पास भेजेंगे, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण आसानी से और अच्छे तरीके से हो पाएगा। और जब पैसे रहेंगे तो इनके परिवार में खुशहाली आएगी और शिक्षा, यानी कि जो परिवार में बच्चे होंगे जिन्हें की उम्र विद्यालय जाने की होगी, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, खान पान अच्छा होगा, बच्चों को, परिवार के अन्य सदस्यों को अच्छे पोषण युक्त भोजन मिलेंगे, तो परिवार एक खुशहाल जिंदगी जीने लगेगा। इसका उद्देश्य यह भी है कि इसके जरिए बेहतर स्वास्थ्य, यानी कि परिवार का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा पोषण के साथ साथ है, जब गरीबी को कम करेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, अच्छे पोषण युक्त भोजन करेंगे और धीरे धीरे गरीबी को कम करेंगे, तो बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता, बेहतर आवास उपलब्ध होने लगेंगे। क्योंकि जब ये पैसों की बचत करते हैं, उन्हीं पैसों का उपयोग अच्छे कार्यों में, पोषण युक्त भोजन करने में, आवास उपलब्ध कराने में, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर जीवन शैली जीने में उसे लगाते हैं। बचत की मदद से अनिश्चितता का सामना करने में अधिक सक्षम होना भी एक कारगर कदम है। वे एक अधिक स्थिर और टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। एक ऐसा लक्ष्य जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी साझा करता है। प्रेषण निजी धन होते हैं जो निजी माध्यमों से भेजे जाते हैं। यह अस्पष्ट है, लेकिन साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र में प्रेषण संबंधी कार्यों के लिए समर्थन और प्रोत्साहन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रेषण की शक्ति का लाभ उठाने के लिए विनियामक और नीतिगत पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए सरकारें, विशेष रूप से सबसे गरीब और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके सकारात्मक प्रभाव को काफ़ी हद तक बढ़ा सकती है और समन्वित पहलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के कल्याण को बढ़ाने के प्राथमिक लक्ष्य को बेहतर ढंग से समर्थन दे सकेंगे। आज 16 जून है और आज के दिन पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस यानी IDFR मनाया जाता है। यह दिन उन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिकों के बलिदान और योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक संदेश, और संदेश के बाद हम सुनेंगे एक बेहतरीन फिल्मी गीत। फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, गाया है जावेद मोहसिन ने। उससे पहले आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक

0: जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: संदेश के बाद श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में सुनते हैं एक बेहतरीन गीत। फिल्म का नाम है कुली नंबर 1।

श्रोताओं, युवाणी कार्यक्रम में अभी आपने आनंद लिया इस बेहतरीन गीत का जिसे गाया था जावेद मोहसिन ने और फिल्म का नाम था कुली नंबर वन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे श्रोता बहुत सारे पर्व के बारे में जानते होंगे और उन्हीं में से एक पर्व है राजा संक्रांति या राजा पर्व। इस पर्व के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहेंगे। बहुत से ऐसे भी श्रोता हैं जो इस पर्व के बारे में नहीं जानते हों, तो आइए हम आपको बताते हैं कि यह पर्व कब और कहां मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषता है। श्रोताओं, यह पर्व यानी कि राजा पर्व ओडिशा का एक प्रमुख रंगारंग त्यौहार है जो मानसून के आगमन और कृषि कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है। इस 3 दिवसीय

उत्सव जो 14 से 16 जून के बीच मनाया जाता है, मुख्य रूप से नारी शक्ति, प्रकृति और धरती माता के विश्राम का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन कई पकवान बनाए जाते हैं। पारंपरिक व्यंजन जैसे पोड़ा पीठा और अन्य मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। पारंपरिक संगीत, लोकगीत और पेड़ों की डालियों पर झूलने का आनंद लड़कियों द्वारा लिया जाता है। इस दिन लड़कियां काफ़ी उत्साह से सजती हैं, संवरती हैं और पेड़ों पर और जहां भी जगह मिलता है वहां झूले बनाती हैं और झूलों का आनंद लेती हैं। जैसे हमारे यहां सावन आने पर लड़कियां पेड़ों पर या घर के बरामदे में रस्सियों से झूले बनाती हैं और झूले का आनंद लेती हैं, उसी प्रकार से वहाँ की लड़कियाँ यानी उड़ीसा की लड़कियाँ झूलने का आनंद लेती हैं। उत्सव मिथुन संक्रांति से एक दिन पहले शुरू होता है और उसके दो दिन बाद समाप्त हो जाता है। त्यौहार का समापन वसुमती स्नान या भूमा देवी के स्नान नामक प्रथा के साथ होता है। महिलाएँ एक पत्थर की पूजा करती हैं जो धरती माता का प्रतीक है। वे उसे हल्दी के लेप से स्नान कराते हैं और उसे फूल चढ़ाते हैं और उसे सिंदूर लगाते हैं। इस त्यौहार का संबंध असम के अंबुबाची मेले से भी है। यह त्यौहार गर्मी के मौसम के अंत और मानसून के आगमन से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए यह कृषि और खेती से संबंधित समुदायों और गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है। सभी श्रोताओं को इस पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए जानते हैं हम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में। श्रोताओं, निसंदेह हम कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम ने संचार के क्षेत्र में एक अद्भुत कार्य किया है। भारत में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, जो एक अभियान के तहत लागू हुआ था। इसका उद्देश्य पूरे देश में अपने ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करके नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना था। इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि के द्वारा देश को डिजिटल रूप में सशक्त बनाने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। यह आम जनता तक पहुंचने का आसान तरीका है और उन्हें अपने दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को इस अभियान को शुरू किया था। इस अभियान की सहायता से ग्रामीण भारत को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना है। डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है, इसके कई घटक हैं, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। देश भर में विभिन्न डिजिटल सेवाओं को लागू करने में, विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना आवश्यक है। देश के आंतरिक क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या तो बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें स्थापित करने के पीछे यही कारण है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड एक सरकारी निकाय जो राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना को लागू करने के लिए कार्य कर रही है, डिजिटल इंडिया परियोजना के लिए भी जिम्मेदार है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क का लक्ष्य देश भर में 250,500 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से एक हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ता है। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पूरे देश में 4 लाख इंटरनेट बिंदु स्थापित किए जाएंगे, जहां से हर कोई इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भारत के सभी लोगों की पूर्ण भागीदारी के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, उसे डिजिटल साक्षरता कहते हैं। डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, ज्ञान और कौशल अनिवार्य है। डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन डिजिटल उपकरण हैं जिनका उपयोग संचार, अभिव्यक्ति, मिलकर काम करने और नेटवर्किंग करने के उद्देश्य से किया जाता है।

डिजिटल साक्षरता का मिशन 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को कवर करेगा। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य विकास क्षेत्रों के 9 स्तंभों पर अत्यधिक आवश्यक बल प्रदान करता है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र अपने आप में एक जटिल कार्यक्रम है और कई मंत्रालयों और विभागों से जुड़ा हुआ है। यह अभियान देश में नेटवर्क पहुंच और कनेक्टिविटी में अंतराल को कम करने पर केंद्रित है। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के 2 उपघटक हैं, सामान्य सेवा केंद्र CSC, दूसरा डाकघर बहु सेवा

यह अभियान देश में नेटवर्क पहुंच और कनेक्टिविटी में अंतराल को कम करने पर केंद्रित है। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के दो उपघटक हैं, सामान्य सेवा केंद्र CSC, दूसरा डाकघर बहु सेवा केंद्रों के रूप में। ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और अधिक कुशल बनाने के लिए IT का उपयोग करके सरकारी प्रक्रिया की री इंजीनियरिंग, विभिन्न सरकारी डोमेन में सरकारी सेवाओं के वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी मंत्रालयों विभागों द्वारा इसे लागू करने की आवश्यकता है। ई क्रांति, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करना और उन तक पहुंचने की प्रक्रिया को सरल बनाना, इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा ई गवर्नेंस के युग में प्रवेश करने के लिए ई गवर्नेंस से संबंधित कई कदम उठाए गए हैं। भारत में ई गवर्नेंस सरकारी विभागों के कंप्यूटरीकरण के लिए उन पहलों तक जो शासन के सूक्ष्म बिंदुओं को समाहित करती है तेजी से विकसित हुआ है, जैसे कि नागरिक केंद्रीयता, सेवा उन्मुखीकरण और पारदर्शिता। इसका उद्देश्य देश के लोगों के उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्वितरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उत्पन्न विश्वसनीय डेटा की पारदर्शिता और उपलब्धता सुनिश्चित करना है। नौकरियों के लिए IT, यह स्तंभ IT, ITES क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कौशल हेतु युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी केंद्रित है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सुलभ भारत अभियान और मोबाइल ऐप, इसे सुगम्य भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य सभी प्रकार की सेवाओं को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करवाना है। तो श्रोताओं, अभी हम जानकारी दे रहे थे भारतीय डिजिटल कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम में श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत। आवाज़ें हैं बेनी दयाल और अनमोल मलिक की, और फिल्म है चुरा के दिल मेरा।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गीत। सुनिधि चौहान की आवाज़ में शब्द हैं समीर के और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अब कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं, आइए सुनते हैं बेनी दयाल और अनमोल मलिक की आवाज़ों में फिल्म एल्बम है चुरा के दिल मेरा का यह बेहतरीन गीत है।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी अब यहीं संपन्न होता है। युवाणी कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर आप सबों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी रवि भूषण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं मनोरंजन ओझा की आवाज़ में यह बेहतरीन लोकगीत, और लोकगीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

श्रोताओं, मनोरंजन ओझा की आवाज़ में अभी आपने सुना यह भोजपुरी लोकगीत। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

प्रणाम। ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ आशुतोष सिसोनी भोजपुरी समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज कैमूर में कहलन कि राज्य सरकार आम लोगन के समस्या के समय पर समाधान खातिर प्रतिबद्ध बा। मुख्यमंत्री कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखंड के पहड़िया पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में ये बात कहलन। वो कहलन कि बीतल एक महीना में सहयोग शिविर के माध्यम से मिलल कुल 3,03,678 आवेदन में से 2,61,618 आवेदन के निपटारा कल जा चुकल बा, जवन कुल आवेदन के लगभग 90% बा। आगे कहलन कि यह कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य जनता से सीधा मिल के उनकर समस्या के समाधान कल बा। सहयोग शिविर के माध्यम से लोग के शिकायत के तुरंते निपटारा कल जा रहल बा। तय सीमा में कार्रवाई ना होखला पर संबंधित अधिकारी लोग पर कठोर कदम उठावल जाय। इससे पहले मुख्यमंत्री मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर के राज्य के सुख समृद्धि आ विकास खातिर कामना कैलन। ये अवसर पर लगभग 196 करोड़ रुपया के लागत से 60 गो विकास योजना के उद्घाटन आ शिलान्यास कैलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा सुशासन आ गरीब कल्याण के 12 साल पूरा होखला पर आज से प्रदेश के सभी प्रखंड में प्रखंड सहयोग जन कल्याण शिविर आयोजित कल जा रहल बा। 18 जून तक चले वाला यह शिविर में केंद्र आ राज्य सरकार के विभिन्न योजना से जुड़ल आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, EKYC आ लाभ वितरण के सुविधा एक जगह उपलब्ध करावल जा रहल बा। शिविर में हेल्प डेस्क और स्वास्थ्य जांच शिविर के व्यवस्था भी कल गईल बा, ताकि लोग के जरूरी मार्गदर्शन हो सके आ सेवा आसानी से मिल सके। पूर्व मध्य रेल 17 जून के होखे वाला मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा खातिर पाटलिपुत्र आ पटना जंक्शन समेत बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशन से 30 गो विशेष ट्रेन चलावे जा रहल बा। रेलवे के ADG डॉक्टर कमल किशोर सिंह बतौलन की परीक्षा

0: में करीब 5.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकेलेन। एह कारण से आज अकाल बिहार में अलग अलग रूट पर विशेष ट्रेन चलावल जाई। पाटलिपुत्र जंक्शन आ पटना जंक्शन से अररिया, नौगछिया, भभुआ रोड, गया, बक्सर, राजगीर आ झांझा समेत कई गो स्टेशन खातिर विशेष ट्रेन चलावल जाई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA बतौले बाकी आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा खातिर पिछला 24 घंटा में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुकल बाड़े। पुनर्परीक्षा 21 जून के आयोजित हुई। पारदर्शिता बढ़ावे आ पेपर लीक के आशंका खत्म करे खातिर सरकार 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन मैसेज करे पर रोक लगा देले बा। NTA के अनुसार ई प्रतिबंध परीक्षा के दिन आ ओकरा बाद तक लागू रही। साथ ही टेलीग्राम के 30 जून तक पहले से पोस्ट मैसेज के एडिट करे के सुविधा बंद करे के निर्देश दिहल गइल बा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा आ तैयारी के समीक्षा खातिर उच्च स्तरीय बैठक कैलन। उ विद्यार्थी लोग के सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था आ परीक्षा प्रक्रिया के निष्पक्षता पर विशेष जोर दहलन। उ गृह सचिव सभे राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश आ केंद्रीय एजेंसी के सुरक्षा प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन करे के निर्देश दहलन। पश्चिमी चंपारण के बेतिया अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर पर कार्यरत क्लर्क राजकुमार मिश्रा के निगरानी विभाग के टीम 15,000 रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कैले बा। निगरानी DSP श्याम बाबू प्रसाद बतौलन कि क्लर्क जमीन के जमाबंदी अनलॉक करे के खातिर शिकायतकर्ता से रिश्वत मंगले रहलन। शिकायत के सत्यापन के बाद ई कार्रवाई कैल गईल। पूर्वी चंपारण जिला में TB उन्मूलन अभियान के गति देवे खातिर सभे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरन के कफ अगेंस्ट TB ऐप के उपयोग पर 2 दिन के प्रशिक्षण देहल गईल बा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह डिजिटल ऐप के मदद से ग्रामीण क्षेत्रन में संभावित TB मरीजन के जल्दी पहचान आ स्क्रीनिंग आसान हो जाए, जौना से समय पर इलाज सुनिश्चित कैल जा सकेला। गोपालगंज अउरी गया में पुलिस 3 गो अपराधी के इनकाउंटर कैले बिया। गोपालगंज में शराब तस्कर आ पुलिस के बीच मुठभेड़ भइल, जेमे उत्तर प्रदेश के अपराधी किशन कुमार के गोर में गोली लागल बा। उहे गया जी में गहना के दुकान से लूट करे वाला अपराधी आ पुलिस के बीच मुठभेड़ भइल, जेमे 2 गो अपराधी सुजीत चौधरी और मलाह के गोर में गोली लागल बा। एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: भोजपुरी समाचार बुलेटिन अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता भाई बहन लोग के रज्जू भाई के तरफ से नमस्कार, आ झुनी बहन रौरा के भी नमस्कार।
1: नमस्कार रज्जू भाई और सब श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम।
0: देखी झुनी बहन, हमनी के जितना भी ये संसार में आदमी बड़न, जीव जंतु बड़न, एकर सब कोई के एगो परिवार होला। आ परिवार के ही सहयोग से आदमी विकास करेला। आ परिवार में आपसी प्रेम आ भाईचारा जौन होला, ओकरा से आदमी के मानसिक विकास तो होबे करला, ओकरा साथे साथे आदमी के संतुष्टि भी होला।
1: देखी रजू भाई
0: जी,
1: परिवार एगो ऐसा चीज बा, एगो ऐसा अनमोल तोहफा बा कि ओकर मतलब जोड़ दुनिया में

0: कुछ नहीं खे केतनो संपत्ति रउआ कमा ले करोड़ों अरबों कमा ले लेकिन रउआ साथे परिवार नहीं खे तो रउआ कुछ नहीं खे ऐसे को धन के का करब देखी ओकरा चलते का हो गई पहले आदमी के बहुत लंबा चौड़ा परिवार रहत रहे माने दादा दादी परदादा तक से रहत रहन हाँ,
1: संयुक्त परिवार
0: संयुक्त परिवार रहत रहे एकरा बाद देखी कम होत होत आदमी के मतलब माई बाप आ अपन मतलब परिवार रह गई मेहरारू लेके हाँ अब ओहू से देखी कट के आदमी माइयो बाबू के परिवार निखन कहत परिवार अपन का तो अपन बीवी बच्चा उतरे परिवार रह गई तो एकरा से देखी का होता हानि बा कि बच्चा और संस्कार सीखल कम हो गई ले
1: जी कारण है कि देखिए पहले जो संयुक्त परिवार रहे तो ओह में चाचा से आदमी कौनो गुण सीखत रहन जैसे कि रउरा महाभारत के कहानी देखल जावे दी तो अभिमन्यु के जो शिक्षा मिले रहे वो अपना परिवार से मिले रहे
0: सबका मिलेला दादी आदमी के कहानी सुनावत रही बाबा रामायण महाभारत इस सब के शास्त्र पुराण के बात करत रहन तो ये सब देखी सब छूट गई बच्चन से
1: परिवार के महत्व तब नजर आवेला ना जब आदमी पर कोनो संकट या समस्या आ जाला उती घड़ी उनकरा कोई करे वाला ना रहेला तो पहले के जो संयुक्त परिवार रहे एकरा में आपसी प्रेम भाईचारा के चलते यदि कोई पर कोनो संकट आवे या कोनो परेशानी या बड़ बीमारी आवे तो एक दूसरा इतना मदद कर देते रहे कि ओकरा दुख के अंदाज ना मिलत रहे
0: देखी रजी भाई कोनो जैसे दुरा पर दुख के बात कहनी तो देखी परिवार में का होत रहे कि 10 आदमी बांध तो ओकर समय बीतत ना पता चलत रहे दुख और सुख दोनों के समय लेकिन अब तो देखी रउरा सुख में भी अकेला बानी दुख में भी अकेला बानी भाग दौड़ के जिंदगी अपना लेले बानी रउरा शरीर के भी सुख नहीं खे पैसा कमा तनी मशीन बन गई बानी लेकिन न रउरा सही बानी न रउर बाल बच्चा सही बानी ऐसे उनका के भी देवे के रउरा पास समय नहीं खे
1: जी आ देखी अभी बहुत से आदमी बन की बाहर कमा के या घर से बाहर जाके अपन मेहनत करके अपन परिवार बेटा बेटी के पालन पोषण तक कर रहल बन लेकिन जवन प्रेम रहे के चाहे जवन भाईचारा रहे के चाहे मतलब एक तरह से कहें कि संबंध पर जवन पैसा बा तवन भारी पड़ रहल बा आ ई भविष्य खातिर नीमन नहीं खे मतलब यदि प्रेम ना होखे तो प्रेम जबकि कहल गई बाकी प्रेम सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो हमनी के आपस में प्रेम परिवार में प्रेम रखे के चाहिए आ प्रेम के ही परिणाम बाकी परिवार रहला ओकरा से गांव घर समाज आ राष्ट्र के प्रति भी जब हमनी के प्रेम रही तो ओकरा में हमनी के सार्थक होखल जी
0: परिवार के मतलब ये होला जहाँ रसा थे जे खड़ा भइल परिवार बा
1: जी
0: तो देखी परिवार के महत्व तो बड़ा बढ़िया बातचीत भइल लेकिन अब हमनी के देखल जाओ कि आज हमनी के कार्यक्रम में का जानकारी मिले वाला बा तो तनी एकरा बारे में बता दही
1: देखी झुनी बहन सबसे पहले नू हमनी के अपना किसान भाई खातिर कृषि पर आधारित खबर सुनल जाई आज देश विदेश के अंतर्गत
0: जी जी
1: फिर आज के किसान में एगो हमनी के खूब नीमन भेंट वार्ता सुनल जाई कि बरसाती सब्जी के पौधा कैसे लगावल जाओ कारण कि अभी बरसात के मौसम आ रहल बा आ एह में हमनी के खेत जौन परती रहला डाढ़ जौन भी मतलब बगल बगल परती जमीन होला ओकरा में हमनी के पौधा लगा दही न जा रोप दही न जा तो ओकरा में का होला कि और अधिक सब्जी होखे एकरा खातिर हमनी के सुनल जाई एगो भेंट वार्ता जेकरा जेकर जानकारी दे विजय बहादुर सिंह आ यहाँ से भेंट कैले बनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी
0: हाँ, तो सुनल जी यहाँ से
1: फिर हमनी के नया दौर की नई बात में चलल जी एकरा अंतर्गत हमनी के बानगी के पौधाशाला तैयार करे के बारे में चर्चा कैल जी फिर आज के नसीहत में हमनी के ई कोशिश कैल जी कि पशुअन के टीकाकरण कब करे के चाही आ कामना समय में करे के चाही आ फिर हमनी के आज के प्रश्नोत्तरी में जे भी हमनी के श्रोता भाई बानी किसान भाई बानी वहाँ लोग चिट्ठी भेजी न जा तो वहाँ के चिट्ठी के भी आज हमनी के अपना कार्यक्रम में शामिल कर ली फिर एकरा मौसम पर आधारित हमनी के कृषि सलाह अपना किसान भाई लोग के दिहल जाए आ मौसम के जवन स्थिति बा ओकरा पर भी हमनी के चर्चा कर ली तो आई अब हमनी के कृषि भाई किसान भाई खातिर कृषि पर आधारित खबर सुनल जाओ देश विदेश के अंतर्गत
0: तो देखी राजू भाई
1: जी
0: खबर बा कि विक्रमगंज रोहतास कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण में आत्मा रोहतास के तत्वावधान में सोमवार के यानी कल के प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय खरीफ फसल प्रशिक्षण के कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल एकरा में किसान लोग के वैज्ञानिक पद्धति से खेती करे आ पैदावार बढ़ावे के आधुनिक तौर तरीका के बारे में विस्तार से जानकारी दिहल गेल खरीफ मौसम में धान आ अन्य

0: फसलन के उन्नत खेती के गुर सिखावल गइल आ जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, फसल चक्र के महत्व आ खादन के संतुलित उपयोग पर विशेष जोर दिहल गइल आ एकरा खातिर कृषि विज्ञानी लोग आई रहन आ एकरा बाद मिट्टी के उर्वरा शक्ति बनावल रखे खातिर खेतन में धान के अवशेष ना जलाए पर भी सख्त सलाह दिहल गइल।
1: जी, ये तो बहुत तो निमन यहाँ के सलाह भी दिहल गइल बा।
0: जी जी, तो अब आई जैसन की कहत रही कि हमनी के एगो जानल जे भेंट वार्ता के माध्यम से।
1: जी, तो ये बहुत देखी अभी झुनी बहन का बात बान कि अभी बरसात के मौसम चल रहा है तो हमनी के का करी ने जा कि अपन जितना भी परती जमीन होला, कोई नेनुआ रोप दिलस, कोई भिंडी लगा दिलस, कोई मतलब लौका रोप दिलस, बरसाती सब्जी आदमी जहे तहे रोप देवल आ बिना पटौले बरसात के पानी से हो जाला, आदमी लौका चढ़ा दिलन कि एकदम छत पर सालों भर फरत रहला।
0: हाँ,
1: तो अब रह गई कि एकरा में और नीमन होके और अधिक उपज होके
0: व्यवसायिक रूप से करे होके।
1: हाँ, एकरा खातिर हमनी के आई एगो भेंटवार्ता सुनल जाओ। एकर जानकारी दे रहल बानी विजय बहादुर सिंह आ यहाँ से भेंट के लिए बनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। तो आई हमनी के ई वार्ता सुनल जाओ।
2: श्रोता सभे, बरसातीन सब्जिन के पौध यह समय लगावल जाला, तो कैसे हमनी के बरसाती सब्जिन के पौध लगावे के चाही, ओकरा में का सावधानी होके के चाही, का प्रभेद होके के चाही, एकरा बारे में जानकारी देवे खातिर आज हमरा संगे स्टूडियो में बानी विजय बहादुर सिंह। आप सबया राजपुर रोहतास का प्रगतिशील किसान बानी आ सब्जी के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में यहाँ का काफ़ी नाम बाटे, पुरस्कार भी मिलल बावा सन। तो विजय बहादुर जी, आपका हमारा स्टूडियो में स्वागत बा।
3: जी सर।
2: सबसे पहले तो ई जानल हम चाहब कि जौन पौध लगावे के बा बरसात
3: जी
2: में,
3: जी
2: वो कैसे हमनी के लगावे के चाहिए, ओकरा में सबसे पहले हमनी के का करे के चाहिए?
3: तो किसान भाई, बरसात के मौसम में वर्षा काफ़ी होला, ऐसे ओकरा खाती हमनी के जौन वातावरण 1.20 मीटर यानी लगभग 1.25 मीटर चौड़ा के कियारी चौड़ा के आ लंबाई अपना आवश्यकता अनुसार रखल जाए, 5 मीटर 4 मीटर मने जो भी रखल जाए, तो यह प्रकार के हमनी के कियारी रखल जाए ऊंचा आ 6 इंच ऊंचा होके चाहिए, 15 सेंटीमीटर ऊंचा होके के चाहिए।
2: जी जी।
3: आ जब कियारी के मिट्टी बना दिए तो यह गर्मी के मौसम में पहले ओकर तैयारी करे से पहले फॉर्मालिन एक दवा होला
2: जी,
3: जवना से वह खेत में नमी करके आ फॉर्मालिन डाल दिए जी, डाल के या फिर जौन बा तवन ओकरा के प्लास्टिक से, उजला रंग के प्लास्टिक से ढक दिया। ढके से का होई कि जितना हमरा जमीन में कीड़ा मकोड़ा फंगस जौन बारन या प्लास्टिक से ढके से जौन बड़ुए तवन घास उस के बीज भी बा, जो भी रा बीज बड़ुए उ जौन बा तवन ओही में मर जाई। कम से कम 15 दिन ओकरा के ढक के रखल जाए
2: गर्मी में।
3: जी, गर्मी के मौसम में तैयारी करे के बाद, तो ओकर पहले से तैयारी करे के बाद ताकि कोई घास पात भी ना हो।
2: जी जी जी,
3: जी।
2: अच्छा, तो 15 दिन छोड़ला के बाद का करे के चाहिए?
3: तो फिर ओकरा के प्लास्टिक के हटा दिए आ एक बाद में ओकरा के मिट्टी के बराबर कैली, कूड़ के मिट्टी के बराबर करके आ उहमें जौन बात वन हमरा भीरी पुराना घूर होके या बर्मी कंपोस्ट होके ओकरा के डाल के आ जमीन के समतल कैल जी, जो भी नर्सरी बा ओकरा के समतल कैल जी। समतल कैला के बाद में किनारा किनारा चारू तरफ थोड़ा सा ढाल आ बीच में थोड़ा सा ऊंचा कर दिया
2: जी,
3: ताकि जौन बात वन कभी बरसात के पानी आवे तो उ जौन बात वन बाहर नाली में निकल जाए। जी। आ एकरा बाद में तब बीज हमनी के लगावल जाए।
2: अच्छा
3: जी,
2: तो का पहले हमनी के बीज बुआई करके तब रोपण कई जाए का?
3: जी, बीज के जैसे कुछ एथी बड़ुए जैसे मान ली टमाटर के बा, मिर्च के बा, बैगन के बा, फूल गोभी के बा, पत्ता गोभी के बा, तो एकर जौन बीज हमनी के कियारी में नर्सरी बना के डालल जी,
2: जी बेड बना
3: के, जी बेड बना के डालल जाए आ दूसरा बार ओकरा का काम कैल जी कि जब तैयार हो जाए 4 से 8 सप्ताह के अंदर जब तैयार हो जाए तब जब प्रतिरोपण ओकर कैल जाए।
2: जी जी
3: जी, दूसरा खेत में लगावल जाए।
2: जी
3: जी,
2: ई तो उ सब्जी हो गई ना सर जौन की प्रतिरोपण करे वाली बनी सन।
3: जी,
2: उ सब्जी
3: जी
2: जौन की लत्तरदार सब्जी बनी सन, जौन की एक जगह लगा देहल आ ऊपर चढ़ करके ओकरा के छज्जा बना देहल गेल जौना पर चढ़ करके उ फल
3: जी,
2: तो

0: पानी खातिर का करे
1: ओकरा में भी का काम कल जाई कि जैसे कि थल्ह बनाल जाई थल्ह जौन बात गड्ढा मारल जी ओकरा के भी जौन बात गड्ढा एक फीट के एक स्क्वायर फीट के गड्ढा जौन बात क्यूब के एक फीट लंबा एक फीट चौड़ा एक फीट गहरा के गड्ढा बना के और ओकर मिट्टी बात सूखे खातिर छोड़ दिया आ फिर ओकरा में जौन बड़ुए तवन पुराना कंपोस्ट होके या बर्मी कंपोस्ट होके मिला के ऊँचा कल जाए आ ऊँचा करके लगावल जाए ताकि जौन बात होइजा पानी नत लागे
0: जी।
1: ओकरा से भी अथी होला कि हम छोटा छोटा गिलास लेके आ पौधा के जौन बात ओकरा के हमें रोपाई कर देब आ फिर ओकरा के निकाल के ओहिजा लगा देब तो ऊ भी लाग जाला आ और अच्छा होला जौन कि मने अथी बरसात के समय में
0: मैंने ओकर भी प्रत्यारोपण
1: कर दी तो ऊ भी अच्छा होला
0: जी, जी, जी। अच्छा
1: जी
0: अब एक चीज बताई कि बरसाती पौध लगावे खातिर कई जगह ई भी देखल जाला कि लोग गड्ढा में सीधा रोप देहल आ फिर ओकरा के चढ़ा देहल तो ऊ स्थिति में का करे के चाहिए
1: ओकरा के ऊंचा बतौनी है ना कि ओकरा खाती ऊंचा हम जौन 6 इंच चाहे 1 फीट ऊंचा जौन थला हम बनाए ऊंचा मिट्टी भर के या कंपोस्ट डाल के आ मिट्टी डाल के ऊंचा बनाए आ वो प्रतिरोपण करब ताकि कि बरसात के पानी वो हमें लागे मत
0: जी तो ये प्रतिरोपण फिर बिजाई भी चाहिए तो
1: बिजाई भी हाँ डायरेक्ट भी अगर बीज के बुआई करता नहीं तो वही में बीज के बोअल जाए लेकिन ऊंचा जमीन करके ही लगावल जाए
0: जी
1: जी।
0: अच्छा लतरदार सब्जी खातिर दूरी कितना रखे
1: लतरदार सब्जी बा जैसे कि बरसाती सब्जी बा अभी हमनी के बरसाती सब्जी के बात करता नहीं जा तो बरसाती सब्जी कुछ किसान जौन बा तौन मचान पर लगावलन
0: जी
1: या जेकरा घर के किनारा होके तो छत पर भी चढ़ा सकला जो भी होके या मचान भी अभी मचान विधि वाला चलल बड़ुए तो हर एक फसल की दूरी होला जैसे मान ली कि बरसाती सब्जी में कद्दू लगावे के होई तो ओकर 3 मीटर 2.5 से 3 मीटर दूरी राखल जाए
0: जी जी।
1: एकरा बाद में रवा समझ ली कि नेनुआ लगावे के होई तो लगभग 2x2 के दूरी रखल जाए
0: जी मीटर में
1: हाँ मीटर में। एकरा बाद में रवा समझ ली करैली लगावे के होई तो करैली नीचे ना फरी ओकरा के मचान पर ही फरावल जाए करैली के
0: जी
1: जी। तो मचान तांत वाला रस्सी जौन मिल रहल बा बाजार में या नेट मिलता पैरा नेट मिलता जौन जाली बने बना ओकर मिलता 25 फीट 30 फीट चौड़ा के उ जाली रहता आ बांस के सहारे लगा दिए और कईक साल उ काम करला वही मचान पर फरी फिर जब खत्म हो जी तो फिर ओकरा के निकाल लिहन आदमी
0: जी जी,
1: जी।
0: एह तरह से हमनी के उपाय कर लेबे के
1: आ जोन और नर्सरी वाला जोन हमनी के प्याज के टमाटर के बैगन के जो भी हम लगा रहल बनी तो ओकरा में का काम करे के बा कि एगो जौन बा तौन प्लास्टिक के बाजार में जौन उजला रंग के प्लास्टिक मिलला 100 mm फिल्म के जौन रहला ओकरा के एक मचान नुमा बनावल जाए आ जैसे ही वर्षा के पानी आई बरसात हुई कि अब वर्षा होखे वाला बा तो ओकरा के ढक दिया ऊपर ऊपर ढक दिया ताकि बरसात के पानी जौन बा तवन बाहर हो जाओ आ हमार पौधा जौन बच जाओ नहीं तो बरसात के पानी मार दही तो पौधा जौन बिचड़ा डल्ले बनी उ जौन बा तवन उ टूट जाए आ ज़्यादा पानी लगी तो गल जाए
0: जी जी
1: जी।
0: अच्छा अब रहल बात की हमनी के और का सावधानी जी से कि थल्ला बनौली
1: जी
0: तो ओहू में फार्मेलिन जी से दवाई कली हूँ
1: फार्मेलिनो हमें ना डालल जाए ओकरा में जौन बातौन हमनी के करबंडा जिम से बीज के शोधल जाए अगर 1 किलो बीज लगावतनी तो 2 से 2.5 ग्राम करबंडा जिम जौन बाबेस्टिन के नाम से आवला ओकरा में बीज के अथी करके आ ओकरा के लगा दिए आ जौन बेड पर बीज लगावल जाए जो भी हमनी के प्रतिरोपण करे वाला बा ओकरा के लाइन से लाइन लगावल जाए हाँ या तो लकड़ी से लेके ओही में बीज के डालल जाए या फिर हल्का सा ओकरा के मिट्टी से या कंपोस्ट से बरोबर कर दिए हल्का सा कल जाए
0: जी जी।
1: आ ओकरा के फवारा से सिंचाई कल जाए फवारा जौन बड़ुए 5 लीटर 10 लीटर के मिलला ओकरा से कि ताकि हल्का से हल्का मतलब कि अथी रहो मिट्टी बैठे मत
0: जी
1: जी तब बीज के जर्मिनेशन हो जाए
0: जी जी।
1: आ बीज जब 2 पत्ता 4 पत्ता के हो जाए तब ओकरा ओकरा ऊपर जौन बात कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के छिड़काव कल जाए ताकि कि आद्र गलन लागला बरसात के दिन में सबसे ज़्यादा मिट्टी में जब नमी हुई तो आद्र गलन रोग होला तो पौधा जौन बात अपने आप ओहिजा जौन उठा रोग लेखा उ गले लागी
0: जी जी
1: तो वही खातिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के छिड़काव कल जाए 1 लीटर पानी में 2 ml दू

0: ग्राम दवा घोर के आ वही फवारा से ही सिंचाई कर दी जाई
1: जी,
0: जी तो पौधा वो गलन ना हो ओकरा में
1: जी जी, जी।
0: जब तैयार हो जाए तब दूसरा मुख्य खेत में लगावल जाए या लत्तर वाला सब्जी बढ़ुए तो ओकरा में भी कीड़ा मकोड़ा लागलन
1: जैसे कि ओकरा में तो ज्यादातर देखिले जे कि लाल रंग
0: के हाँ लाल रंग के रेड रंग के लागलन आ उ जौन पत्ती
1: लाल भिंग कहल
0: जलन जी आ उ पत्ती के काट देलन तो ओकरा खाती घर पर दवा अगर बनावतनी तो राख लेली राख लेके तीन हिस्सा आ थोड़ा सा ओमे किरासन तेल मिला दीही आ मिला के ओकरा के शाम के समय में छिड़क दीही तो एको ना ही लगी हन
1: तो राख जरूरी
0: हाँ किरासन तेल पूरा राख में मिला दिए थोड़ा सा आ छिड़क दिए तो अपने आप खत्म हो जाओ गंध से ना जीहन ना तो फिर जौन बड़ुए तौन फौलीडॉल डस्ट 2% बा पहले 1.5% आवत रहे अब 2% तीन हिस्सा राख एक हिस्सा जौन बा तौन फौलीडॉल डस्ट ओकरा के मिला के खूब बढ़िया से आ ओकरा के छिड़काव कर दही तो एको लाल कीड़ा ना अहन उहे सबसे ज्यादा हानि कलन आ एगो और निमोटेड लागला जैसे कि लौकी में सबसे ज्यादा निमोटेड के प्रकोप होला तो निमोटेड में का होला कि चावल के रंग के कीड़ा होलन आ जैसे ही जड़ के ऊपर जौन मिट्टी के ऊपर जौन ओकर एथी बा ओकरे में छेदा करके या रस लेखा एकदम बहला तो ओकरा खाती 4G जौन के टाप 4G ओकरा में थोड़ा सा पहले हर एक थान में दे के या बुआई कर दिया तो निमोटेड एको ना लगी हाँ।
1: जी जी
0: जी
1: अच्छा फलन हुई
0: जी अच्छा फलन हुई।
1: अच्छा एक चीज और बताएं कि हमनी का घरे जो रखे ला जा बीज
0: जी
1: ओकर ज्यादातर लोग बुआई कर देला या कहीं देखेला कि बड़ा जन बा तो नेनुआ बा पुराना हो गेल बा ओके तोड़ लिया कहीं से ओकर बीज लगा दिया
0: जी
1: हमनी के करे के का चाहिए नया बीज बदले के चाहिए या पुरान बीज रखे
0: बीज के तो बदल ही के चाहिए
1: जी
0: बीज जहां एथी होला तैयार होला तो बीज में बड़ा ही सावधानी व्रत के ही बीज सावधानी व्रत के आ उ बीज के तैयारी कइल जाला हमनी के बीज कभी कभार होला कि पूरा पाकल नहीं खे तब तक ही हमनी के तोड़ लेता नहीं जा तो ओकरा के भी हमनी के शोध के लगा सकत नहीं जा बहुत आदमी लगावलन आ तो उ भी ठीक बा लेकिन वनस्पत की बीज जौन बाहर से आवता खरीद के ओकरा के लगावता नहीं तो उ बीज बढ़िया भी होला
1: जी जी, जी। अच्छा जब बरसात में पानी नहीं खे हो तो पानी देवे के
0: चाहिए बरसात में पानी नहीं खे हो तो बरसात में पानी देवे के पड़ी
1: जी
0: जी पानी देवे के पड़ी सिंचाई करत रहे के पड़ी ताकि कि नमी जौन बढ़ुए तौन बरकरार रहो
1: जी
0: थोड़ा सा देख लिए कि 1-2 इंच नमी जौन बा तौन अंगुरी से भी खोद के निकाल के देख लिए नमी नहीं खे तो ओकरा के बा तौन सिंचाई कर दिए
1: जी
0: ढेला बांधल जी अगर मुट्ठी में ढेला ना बांधाई तो समझी कि मने हो जाला
1: जी
0: जी
1: तो अगर इस तरह से हमनी के करतन जा
0: जी
1: तो अच्छा उत्पादन अच्छा बरसात का सब्जी से हमनी के ले हल
0: नर्सरी के ही छोटा ही एथी में एथी कइल जाला तही से जोन बातवन ओकर अच्छा फलन होला
1: हो सकेला जी तो विजय बहादुर सिंह जी आप अइली आ इतना निमन जानकारी देनी एकरा खातिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद
2: देखी कितना निमन जानकारी देनी विजय बहादुर सिंह यहाँ के बतैनी कि हमनी के मचान बांध के जौन पौधा लगावल जाए ओकरा में बहुत निमन फरेला प्लस कीड़ा मकोड़ा भी जौन लागल सन ओकरा बारे में भी फरिया फरिया के बतैनी तो इतना निमन जानकारी दिहला खातिर यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद आ देखी हमनी के और चर्चा करे से पहले आई थोड़ा संदेश सुन लिया

ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल

0: बीते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1-5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20-29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वहीं रेट पर कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: देखी छुनी बहन,
1: जी
0: अभी पौधाशाला आ चाहे नर्सरी तैयार करे खातिर उचित समय चल रहल बा। पौधाशाला तैयार करे खातिर सबसे पहले माटी के हमनी के उपचारित कर देवे के चाहिए। फिर ओकरा बाद माटी के जब चुनाव हो गई तो एकरा साथे साथे हमनी के खेत वैसन चुने के चाहिए जहाँ से कि जल निकासी के सुविधा होके। आ एकरा बाद बीज के जब अंकुरण होके खातिर, अंकुरण होके से पहले 24 घंटा पहले हमनी के साफ पानी में बिया के भिंगा के रख देवे के चाहिए। एकरा बाद फिर सूती कपड़ा में बांध के गरम आ अंधेरा जगह पर ओकरा के 2-3 दिन तक बीज के टांग देवे के चाहिए, जब तक कि बीज बीज में सफेद अंकुरण मत
1: अंकुर आ जाए ओकरा में।
0: जी, तो एकरा खातिर हमनी के का करे के चाहिए कि स्वस्थ बीज के ही चुनाव करे के चाहिए। आ माटी के स्थान के चुनाव कइल बहुत जरूरी बा, कारण कि खेत तैयारी करे खातिर सामान्य माटी में लगभग 1 भाग सड़ल गोबर के खाद आ बर्मी कंपोस्ट मिला देवे के चाहिए। नर्सरी के चुनाव करत समय सुबह शाम हल्का धूप लागे वाला जगह ही चुने के चाहिए, कारण कि जौन पौधा अंकुरित होला वो मुलायम होला, मतलब दोपहर के धूप यदि तेज नत लागे तो उ अच्छा होला। एह तरह से हमने के अपन नर्सरी तैयार करे के चाहिए।
1: देखी तो बड़ा बढ़िया बात रहल। रजू भाई देखी जे खेती के साथे साथे जे पशुपालन कैले बा
0: जी,
1: तो देखी एकरा के जैसे गाय हो गई भैंस बकरी हो गई एकरा के समय पर टीका लगावे के चाहिए, काहे कि ओकरा से घातक बीमारियन से बचावे के चाहिए आ दूध के पैदावार सुरक्षित रखे आ उनका

0: इलाज में होखे वाला भारी खर्चा से बचे के सबसे प्रभावी तरीका ही होला। अगर पशुअन के मुँहपाका खुरपाका बीमारी खातिर साल में 2 बार टीका लगावे के चाही, गलाघोंटू रोग खातिर 1 बार और लंगड़ी बुखार खातिर भी 1 बार टीका लगवावे के चाही। आ एक बात और ध्यान में रखे के चाहिए कि जब पशु स्वस्थ होकर तबे टीका लगवाई, बीमार पशु के न लगवाई। आ जौन गाभिन पशु बाड़ी सन उन्हीं के डॉक्टर के सलाह से लगवाई। तो देखी रहल आज के नसीहत। आ देखी देखा तो हाथ में कुल लाल पियर सब लिखल चिट्ठी लौकता, कहाँ से आयल बता ओकरा बारे में बताएं।
1: देखी झुनी बहन, हमनी के जौन कार्यक्रम दही न जा किसान बाड़ी, एकरा के बहुत सा किसान भाई हमनी के सुनेलन आ सुन के वो अपन चिट्ठी भी लिखेलन। तो हमनी भी चिट्ठी ई जौन आयल बा लिफाफा जौन बा एकरा के लाल रंग से लोग लिख ले बा। हमनी के कार्यक्रम के पता बहुत आदमी के जानकारी ना हो या कुछ आदमी के होई भी, तो लिखे आदमी हमनी भी चिट्ठी जौन आला उकर पता है कार्यक्रम किसान बाड़ी द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड है 82115। तो अब रही
0: की
1: भेजे वाला बानी ग्राम बेलाढ़ी से, पोस्ट मोरसराय, थाना दरीगाँव, जिला रोहतास से। जे पत्र लिखले बानी वहाँ के बानी उदय सिंह, ज्ञानचंद सिंह आ उमा शंकर सिंह आ लक्ष्मीना देवी।
0: अच्छा।
1: यहाँ लोग लिखत नहीं
0: कि
1: हमनी के मकैया के खेती कल चाहतनी जा, एकरा खातिर का कल जा।
0: तो देखी श्रोता भाई, सबसे पहले तो चिट्ठी लिखला खातिर सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आ देखी अगर खरीफ मक्का के बुआई करे के बाद तो पहले खेत के जुताई करके ओकरा में 10 से 15 टन गोबर के सड़ल खाद डाल दही, ये प्रति हेक्टेयर दर से बतावत जाए। आ बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर आ 50 किलो पोटास के व्यवहार करी। तो ये देखी रहल रौरा मक्का के कैसे बुआई करे के बा। आ देखी अब हमनी के लगे हाथ है राजू भाई,
1: मौसम पर भी एक नज़र डालेंगे।
0: हाँ, तो कल के देखी पूर्वानुमान बा कि अधिकतम तापमान जन 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम जन बाटे 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता 60% और न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता 20%। आ हवा के जौन गति बाटे तवन पवन दिशा जौन बाटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले के संभावना बा। तो ये देखिए कौन तरह के मौसम विभाग के तरफ से कोई चेतावनी नहीं खे, जैसे आंधी पानी या ओला के कोनो संभावना नहीं खे। तो ये तो रहल हमनी के मौसम संबंधी जानकारी। आ अब समय हो गए किसान भाई बहन लोगन से विदा लेवे के। तो चले चले के बेरा में सब श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम और रजू भाई रहुओ के नमस्कार।
1: नमस्कार झुनी बहन, सब श्रोता भाई बहन लोगन के भी रजू भाई के तरफ से नमस्कार।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का कार्यक्रम। किसानवाणी प्रायोजक थे कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब वक्त हो चला है श्रोताओं भोजपुरी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सांझ गीत का। तो आइए लेते हैं आनंद कुछ बेहतरीन फिल्मी गीतों का। पहला भोजपुरी गीत हमने लिया है फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से। रजनीश मिश्रा के आवाज़ हैं, श्याम देहाती के शब्द हैं और संगीत दिया है राजेश रजनीश ने।

सांस्कृत कार्यक्रम का पहला भोजपुरी गीत अभी आपने सुना फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से। आवाज थी रजनीश मिश्रा की, श्याम देहाती के शब्द थे और संगीत दिया था राजेश रजनीश ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। शब्द विनय बिहारी के हैं, संगीत निर्देशन है लाल सिन्हा का और फिल्म का नाम है दरोगा बाबू आई लव यू।

फिल्म दरोगा बाबू आई लव यू का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी श्रेया घोषाल और उदित नारायण की, लिखा था विनय बिहारी ने और संगीत से सजाया था लाल सिन्हा ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आपन भइल पराया से। कुसुम कपाड़िया की आवाज़ हैं, एमडी प्याशा के शब्द हैं और संगीत निर्देशन है संतोष सुमन के।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना कुसुम कपाड़िया की आवाज़ में फिल्म आपन भइल पराया का यह बेहतरीन भोजपुरी गीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीते। कार्यक्रम का शेष गाना अब आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: सुन, सोचतानी की काहे ना आपन बिजनेस बढ़ाई
2: ता रोकले के बा।
1: रोकले तो कोई नहीं खे, बाकी समझ में नहीं खे आवत की कैसे मदद मांगी।
2: हमरा से?
1: तुहरा से? तो बतावो।
2: आकाशवाणी बाना, हम सुनले बानी की आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा।
1: तो ओकरा से हमरा की का फायदा बा?
2: फायदा बा, जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से वही जगह पहुँच जाई।
1: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे हुई।
2: बहुत आसान बा, हम बतावत बानी। नंबर लिखी 8700014242।
1: ओ, 8700014242।
2: हाँ।
1: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर।
0: कार्यक्रम में आइए सुनिए फिल्म औरत खिलौना है का यह बेहतरीन भोजपुरी गीत है। आवाज़ें हैं उदित नारायण और निहिरा जोशी की। संतोष पुरी ने इसे लिखा है और संगीत दिया है धनंजय मिश्रा ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना उदित नारायण और निहिरा जोशी की आवाज़ में यह बेहतरीन भोजपुरी गीत है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म देवन मिसिर से। गाया है कल्पना पटुवारी ने, हरिचंद्र और प्रियदर्शी के शब्द हैं और संगीत दिया है अजीत कुमार अकेला ने।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले एक ही नज़र डाल लेते हैं कैमूर और रोहतास जिलों की आज की स्थानीय गतिविधियों पर। श्रोताओं, कैमूर में विकास, जनकल्याण और जनसंवाद कार्यक्रमों में शामिल हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, आज कैमूर जिला अंतर्गत भ्रमण किया। अपने दौरे के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा धार्मिक, विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में भाग लेते हुए आमजन से सीधा संवाद स्थापित किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी पहाड़िया पंचायत स्थित मुंडेश्वरी धर्मशाला के समीप बने हेलीपैड पर पहुँचे। इसके बाद वे माँ मुंडेश्वरी धाम जाकर माता के दर्शन एवं पूजन अर्चन किए तथा राज्य एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मां मुंडेश्वरी से प्रार्थना कर माननीय मुख्यमंत्री जी सहयोग शिविर एवं सभा स्थल पहुँचे, जहां वे विभिन्न विकास योजनाओं से संबंधित लगभग 196 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। साथ ही सहयोग शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र एवं सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। श्रोताओं, आज रोहतास जिले के विभिन्न पंचायतों में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिवसागर प्रखंड के नाद पंचायत सरकार भवन में जिला पदाधिकारी रोहतास श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में

सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उप विकास आयुक्त भी शामिल हुए। शिविर के दौरान लाभुकों के बीच राशन कार्ड, विभिन्न प्रमाण पत्र एवं शौचालय निर्माण की राशि का वितरण किया गया तथा कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान कराया गया। सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं लाभुकों ने भाग लेकर विभिन्न विभागों से संबंधित आवंटन आवेदन एवं समस्याएं बताई। प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया तथा लाभुकों को इसकी जानकारी दी गई। शिविर में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बारी बारी सरकारी कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। इसी उद्देश्य से पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। इससे लोगों का समय और संसाधन दोनों बच रहे हैं तथा सरकारी सेवाओं की पहुंच भी अधिक प्रभावशाली हो रही है। श्रोताओं, अभी हम कार्यक्रम में एक नज़र डाल रहे थे रोहतास और कैमूर जिले की आज की गतिविधियों पर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दीवाना से। आवाज़ कुमार सानू की समीर के शब्द हैं और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

तो श्रोताओं, इसी के साथ है आज का गुड इवनिंग रोहतास अब यहीं संपन्न होता है। इससे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में थोड़ी देर में शाम के 7:25 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी प्रखंडों में आज से 3 दिवसीय सहयोग सहजन कल्याण शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैमूर और सिवान के शिविरों में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले 22 जून तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम सेवा पर लगाया प्रतिबंध। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेलवे कर रहा है 30 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर आज से प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों में 3 दिवसीय प्रखंड सहयोग सहजन कल्याण शिविर की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैमूर और सिवान जिले में आयोजित शिविर में शामिल हुए। कैमूर के भगवानपुर प्रखंड स्थित पहड़िया पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते एक महीने में सहयोग शिविर के माध्यम से 3,03,678 प्राप्त हुए आवेदनों में से 2,61,618 आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं, जो कुल प्राप्त आवेदनों का 90% है।
1: साथियों, हम लोगों ने शिविर कार्यक्रम शुरुआत किया है और लगभग एक महीना पूरने वाला है, एक दो दिनों के अंदर। और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 3,03,678 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ, 2,61,628 लोगों का आवेदन निष्पादित किया गया। कार्यक्रम का मकसद है जनता से संवाद, जनता के समस्या का हल करना।
0: उन्होंने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से लोगों की शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है और निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।
1: जनता जो लगातार किसी भी तरह के परेशानी को झेल रहा हो, उन समस्या को समाप्त करना है। और इसके जो कानून है, बड़ा स्पष्ट है साथियों, 10 दिन के अंदर यदि कोई आदेश पारित नहीं हुआ तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से वैसे पदाधिकारी को पहला नोटिस दिया जाता है। दूसरा नोटिस जब 20 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, और तीसरा नोटिस 25 दिन के बाद, और 30 दिन तक यदि किसी पदाधिकारी ने आदेश नहीं किया तो 31वें दिन वह स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे बिहार में रहकर

0: अपराध करते हैं तो इसे चुनौती माना जाएगा और 48 घंटे के भीतर जवाब दिया जाएगा।
1: कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है। और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी।
0: इससे पहले उन्होंने मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि और विकास की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 196 करोड़ रुपए की लागत से 60 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मां मुंडेश्वरी धाम में रोपवे निर्माण की दिशा में जल्द पहल की जाएगी, साथ ही मंदिर परिसर के विकास और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को मां मुंडेश्वरी धाम से जोड़ने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आज सिवान के पचरुकी प्रखंड के पपौर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भी शामिल हुए। श्री चौधरी ने यहां 180 करोड़ रुपए की लागत वाली 38 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही योजनाओं के लिए आवेदन भी दिया। एक रिपोर्ट।
2: पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 25 विभागों के अलग अलग काउंटर लगाए गए, जहां आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। जहानाबाद में जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने मोदनगंज प्रखंड के जैतीपुर कुरुआ सहित विभिन्न पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों का निरीक्षण कर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन और पोर्टल पर अपलोड की स्थिति की समीक्षा की और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इधर सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड स्थित बेला सिंगार मोती पंचायत में जिलाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक शरत आरएस ने सहयोग शिविर के दौरान पात्र लाभुकों के बीच मौके पर ही जॉब कार्ड का वितरण किया। वहीं अरवल जिले के प्रभारी मंत्री दीपक प्रकाश ने सदर प्रखंड के सोनबरसा पंचायत में आयोजित शिविर के दौरान लोगों से संवाद किया और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शेखपुरा जिले के पंचायतों में आयोजित विभिन्न सहयोग शिविरों में प्रभारी मंत्री श्वेता गुप्ता, जिलाधिकारी शेखर आनंद तथा पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों ने भाग लिया। दूसरी तरफ सारण में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों में लोगों की समस्याएं सुनी तथा इनके त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। उधर भागलपुर के अंबा पंचायत सहयोग शिविर में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने लोगों की शिकायतें सुनी और शिविर में प्राप्त अधिकांश आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: 18 जून तक चलने वाले इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, ई-केवाईसी तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम पर 30 जून तक संदेशों को संपादित करने की सुविधा भी बंद रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पूर्व मध्य रेल कल होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र और पटना जंक्शन सहित विभिन्न स्टेशनों से 30 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा। एडीजी रेल डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने बताया कि परीक्षा में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षार्थियों के आवागमन में सुविधा के लिए आज और कल विभिन्न रूटों पर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। आज पाटलिपुत्र और पटना से किशनगंज, नरकटियागंज, अररिया, नवगछिया तथा भभुआ के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल भी पटना, गया, बक्सर, कियूल, राजगीर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, औरंगाबाद, हाजीपुर तथा नवगछिया सहित विभिन्न स्टेशनों से 26 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। शीर्ष समाचार एक अंतराल।

0: AIR at 90.
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देर शाम 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचेंगे। श्री चौहान इस दौरान कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे कल पटना के नौबतपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान वे किसानों से संवाद करेंगे तथा कृषि भूमि संरक्षण, टिकाऊ खेती और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में तेजी से और समग्र विकास हुआ है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ी है और विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर खुले हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 146,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। वहीं मेट्रो रेल का नेटवर्क लगभग 250 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 1,200 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनों से अधिक हो गई है। पश्चिम चंपारण के बेतिया अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर पर कार्यरत क्लर्क राजकुमार मिश्रा को निगरानी विभाग की टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी DSP श्याम बाबू प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार क्लर्क ने शिकायतकर्ता से जमीन की जमाबंदी अनलॉक करने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिसके सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की गई। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉनसून की उत्तरी सीमा जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। हालांकि मॉनसून की सक्रियता में कमी आने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
3: राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष भाग शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।

0: राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 331 लीटर शराब की एक बड़ी खेप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के कैदी गांव में कृषि उद्यमी सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को खाद, बीज, कृषि संसाधन और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले में टीबी उन्मूलन अभियान को गति देने के लिए सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को कफ अगेंस्ट टीबी ऐप के उपयोग का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस डिजिटल ऐप की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान और स्क्रीनिंग आसान होगी, जिससे समय पर उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी प्रखंडों में आज से 3 दिवसीय सहयोग सहजन कल्याण शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैमूर और सीवान के शिविरों में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले 22 जून तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम सेवा पर लगाया प्रतिबंध। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेलवे कर रहा है 30 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: AIR at 90.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गया जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
2: गया जिले के खिजरसराय में बीते दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रौद्योगिकी केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने गया जी इस्लामपुर खिजरसराय पथ से देवगांव स्थित टेक्नोलॉजी सेंटर तक सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का भी शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी केंद्र क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गया के प्रसिद्ध पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट के शिल्पकारों को बधाई देते हुए कहा कि GI टैग मिलने से बिहार की पारंपरिक कला और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की लोक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर है तथा GI टैग से इन उत्पादों को कानूनी संरक्षण के साथ वैश्विक बाजार में नई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। गया जी के शुभम कुमार ने JEE एडवांस्ड 2026 परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया। शुभम ने IIT दिल्ली जोन के छात्र हैं। उन्होंने कुल 360 में से 330 अंक प्राप्त किए हैं। इससे पहले शुभम ने JEE मेन 2026 में दोनों सेशन में भी 100% स्कोर किया था। शुभम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के

लिए उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी और रोजाना 8 घंटे अध्ययन करते थे। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम और निरंतर मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित युवा संगम के फेज 6 कार्यक्रम के तहत पंजाब से आए युवाओं के प्रतिनिधि मंडल ने गया की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत से परिचय प्राप्त किया। प्रतिनिधि मंडल ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर परिसर तथा विष्णुपद मंदिर का भ्रमण किया और बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी ली। इधर बीते दिनों संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उप समिति के 10 सांसदों के एक शिष्ट मंडल ने महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जनजातीय गरिमा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तथा वनाधिकार अधिनियम के तहत भूमि के पट्टे वितरित किए गए। अपने संबोधन में श्री मांझी ने कहा कि आदिवासी समाज देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार उनकी

0: समाहरणालय सभागार में जनजातीय गरिमा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तथा वनाधिकार अधिनियम के तहत भूमि के पट्टे वितरित किए गए। अपने संबोधन में श्री मांझी ने कहा कि आदिवासी समाज देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले दिनों म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग एक दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर तथा बकरौर स्थित सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल भी मौजूद रहा। भारत सरकार की ज्ञान भारतम परियोजना के अंतर्गत प्राचीन ज्ञान संपदा के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी तथा नव नालंदा विहार की विशेषज्ञ टीम ने गया जी स्थित एक निजी पुस्तकालय में संरक्षित दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया। इस दौरान लगभग 700 वर्ष पुराने कई महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथ मिले। विशेषज्ञों ने इन पांडुलिपियों को इतिहास, संस्कृति और शोध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गया वन परमंडल द्वारा ब्रह्म वन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भाग लिया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का विस्तार चर्चा की गई। श्री कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण, जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की सराहना करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा जन जागरूकता पर बल दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे गया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
2: प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:51 हो चुके हैं। अब वक्त हो चला है फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम ई मन पसंद का। तो श्रोताओं लीजिए पेश है ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ई मन पसंद।

श्रोताओं के फरमाइशी नगमों पर आधारित कार्यक्रम ई मनपसंद के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी श्रोता सुखी व सानंद होंगे। श्रोताओं, आज का गीतों का यह सफ़र आप तय करेंगे अपने रेडियो साथी रवि भूषण के साथ है। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं फिल्में कुली का यह गीत, जिसे गाया है शब्बीर कुमार ने। शब्द हैं आनंद बख्शी साहब के और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को पसंद करने वाले आप सभी हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, करणवीर हाउस से भूचो, कैंचिया बटिंडा पंजाब से परिम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजोत। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश ऋषिता। तो श्रोताओं, आप सबों की पसंद पर लीजिए पेश यह खूबसूरत गीत जिसे गाया है।

श्रोताओं, ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद की शुरुआत हमने की थी फिल्म कुली से। आवाज थी शब्बीर कुमार की, शब्द थे आनंद बख्शी के और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम सुनेंगे हमराज फिल्म का यह खूबसूरत गीत जिसे आवाज दी है महेंद्र कपूर ने। साहिर लुधियानवी के शब्द हैं और संगीत है रवि के। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं फुटानी चौक नरहन एस्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्य और लल्लू पंडित। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोंगामा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। करणवीर हाउस भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करर, दपिंदर वरिंदन, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हमराज फिल्म का यह खूबसूरत गाना, जिसे गाया था महेंद्र कपूर ने, साहिर लुधियानवी के शब्द थे और संगीत दिया था रवि ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला गाना हमने लिया है फिल्म में जॉनी मेरा नाम से। सुनना चाहते हैं बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू।

अमर से पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म का यह खूबसूरत गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और उषा खन्ना ने, शब्द हैं इंदिवर के और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। तो आइए लेते हैं आनंद इस खूबसूरत गीत का।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म में जॉनी मेरा नाम का यह खूबसूरत गीत, जिसे आवाज़ दी थी किशोर कुमार और उषा खन्ना ने। इंदिवर के शब्द थे और संगीत निर्देशन था कल्याण जी आनंद जी का। श्रोताओं, कार्यक्रम का शेष गाना अब आप सुनेंगे इसे छोटे से संदेश के बाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: संदेश के बाद ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं फिल्म आशिकी का यह बेहतरीन गीत, जिसे एक वक्त इस गीत को काफ़ी पसंद किया गया था और आज भी यह गीत सदाबहार गीतों की तरह सुनने में काफ़ी आनंद आता है। कुमार सानू और अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ हैं। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी रॉय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, ग्राम खरवत से मोतीमाला बीरा सिंह, सुनील राय, चंदन कुमार, कमलेश और कृष्णा, आकाशी सासाराम से सकीबा आलिया, इब्राहिम कमाल, मिराज निसार और पंकज कुमार। तो आप सबों की पसंद पर लीजिए हम पेश करते हैं यह खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम है आशिकी।

फिल्म आशिकी के बाद श्रोताओं अब आइए सुनते हैं फिल्म अनमोल मोती का यह खूबसूरत गीत जिसे आवाज दी है महेंद्र कपूर ने। गीत हैं रवि के और संगीत दिए हैं राजेंद्र किशन ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया, नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज, मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन। तो आप सबों की पसंद पर लीजिए पेश है फिल्म में अनमोल मोती का यह बेहतरीन गीत है।

अनमोल मोती फिल्म का गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म में शावन को आने दो से। गाया है यशुदास ने, लिखा है इंदिवर ने और धुन बनाई है राज कमल ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह बड़क सिंह, ग्राम खरवते गढ़नोखा से मोती माला गुप्ता, लाल बिहारी सिंह और बीरा सिंह।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए अभिजीत और श्रेया घोषाल को फिल्म मैं हूं ना में।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्में सावन को आने दो का यह गीत जिसे गाया था यशुदास ने, इंदिवर के शब्द थे और संगीत था राज कमल का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्यार झुकता नहीं से, आवाज़ है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। SH बिहारी के शब्द हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप श्रोता हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफारजू जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया अमान नसरीन, आमना नसरीन, असमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले, लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद फूलवाले और समस्ते फूलवाले परिवार।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म गुलामी से, लता मंगेशकर की आवाज़ है। शब्बीर कुमार ने भी अपनी आवाज़ दी है, गुलजार के शब्द हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौण, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीना देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से उस्मान अली अंसारी, आमना खातून और अंसारी सनूब।

हमें खेद है श्रोताओं, हम यह गीत आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं। इसी गीत के साथ है फरमाइशी गीतों का यह सिलसिला अब यहीं ख़त्म होता है और संपन्न होता है ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम आप सभी श्रोताओं से फिर रूबरू होंगे और आपके लिए लेकर आएंगे आपकी मनपसंद का बेहतरीन गीत। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त रविभूषण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ संपन्न होता है ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर में हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें।
1: कृपया अब समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए, जो है समाचार संध्या। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
2: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक

0: परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शन

0: श्री नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियन

0: चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंद कुछ बेहतरीन भोजपुरी लोकगीतों का। कार्यक्रम है लोकधारा, कलाकार हैं मनोरंजन ओझा।

तो श्रोता इसी के साथ संपन्न होता है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कलाकार थे भरत सिंह भारती। अगला कार्यक्रम महफिल बस थोड़ी देर में।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है गजलों का कार्यक्रम महफिल। पहला गजल आज सुनते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल, और गायक कलाकार हैं गुलाम अली। शब्द हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज के और संगीत है अलाउद्दीन खान के।

गुलाम अली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे यह खूबसूरत गज़ल जिसे हमने लिया था एल्बम कलाम मोहब्बत से। अगला गज़ल आइए सुनते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज़ में। शब्द हैं नक्श लायलपुरी के और संगीत है जयदेव के।

भूपिंदर सिंह द्वारा गाए इसी गजल के साथ है गजलों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया?

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी। सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

के बाद आई घर नंबर 44। फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है। कुछ खास गानों में यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

कार्यक्रम आज के फनकार अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं वक्त हो चला है। एल्बम पर आधारित कार्यक्रम रसरंग का कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है एल्बम अपने मिलन का जतन कर सजना से। पूर्णिमा देवात की आवाज़ है, गोविंद भत्री के शब्द हैं और संगीत दिया है गोविंद भत्री ने।

अपने मिलन का जतन कर सजना। जी हाँ, अभी आपने इस एल्बम से सुना यह गाना जिसे गाया था पूर्णिमा देवात ने। गीत और संगीत थे गोविंद भत्री के। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है एल्बम ऐ दिल से, गाया है अमृता भारती और अरुण कुमार निकम ने। संगीत हैं गौरव कुमार के और शब्द हैं अरुण कुमार निकम के।

अमृता भारती और अरुण कुमार निकम की आवाज़ों में अभी आपने सुना यह एल्बम गाना। अगला एल्बम गाना हमने लिया है एल्बम बदनाम हुए से। गाया है आयुष्मान चौधरी और राजमणि ने नरेश कुमार के शब्द हैं और संगीत दिया है नरेश कुमार त्यागी ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आयुष्मान चौधरी और राजमणि की आवाज़ों में बदनाम हुए एल्बम का यह एल्बम सॉन्ग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं हिंदी एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम के शेष गाने अब आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रसरंग कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं मुज्तबा अजीज नजा की आवाज में एल्बम चश्मे करम सरकार का यह एल्बम गाना, जिसे लिखा है खुर्शीद हलौरी ने और संगीत दिया है ललित सेन ने।

रसरंग कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हमने लिया है एल्बम शिकवा से। गाया है मनोज कुमार गुप्ता ने, शैलेंद्र शर्मा के शब्द हैं और संगीत है शबाब आजमी और अमित विश्नोई के।

तो श्रोताओं, इसी गाने के साथ है, अब यहीं संपन्न होता है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म प्यासा सावन से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ें हैं। संतोष आनंद के शब्द हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म में प्यासा सावन का यह गीत, जिसे लिखा था संतोष आनंद ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म में प्रेम कहानी से, गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी साहब के शब्द हैं और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं

श्रोताओं, अभी आपने जिस गीत को सुना उसे लिखा था आनंद बख्शी ने, आवाज़ दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और फिल्म का नाम था प्रेम कहानी। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सन ऑफ इंडिया से। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है, शकील बदायूनी के शब्द हैं और इसे संगीत से सजाया है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म सन ऑफ इंडिया का यह खूबसूरत गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। शकील बदायूनी के शब्द थे और नौशाद।

के संगीत था। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म बैजू बावरा से। आवाज मोहम्मद रफी की है, शब्द हैं शकील बदायूनी के, संगीत निर्देशन है नौशाद का।

श्रोताओं, कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत हम करेंगे सुबह 5:51 पर। सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार चिंतन श्री रामचरितमानस से पाठ है संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:20 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम पसंद आपकी। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है सदाबहार हिंदी फिल्में गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हो सकते हैं। श्रोताओं, अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं कल की सभा में प्रसारित

हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतमालिका आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर, 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रम संसार, 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। 7:50 पर आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद, प्रस्तुत करता होंगे संतोष कुमार।

श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, अब कल के मौसम पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि में कल यानी 17 जून को जिले में एक या दो स्थानों पर गरज चमक के साथ है 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने के अनुमान हैं। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत तथा दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 14 से 15 किलोमीटर घंटा की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है। तो श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे कल के मौसम पर। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, अब थोड़ी देर में हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity.

घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब आज की हमारी यह सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो